0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। भगवत गीता हमें स्वास्थ्य के बारे में भी एक बहुत सुंदर बात बताती है। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ क्या है? स्व में स्थित होना। इसीलिए अगर स्वास्थ्य सही से समझना है तो स्व की परिभाषा को समझना आवश्यक है। भगवत गीता हमें बताती है कि जो हमारा शरीर है ये एक समय बाद समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये शरीर हम नहीं है, ये केवल एक गाड़ी है और इसके ड्राइवर हम हैं जो कि आत्मा है। अर्थात कि हम स्व से समझ सकते हैं कि स्व हम आत्मा के प्रकार हैं। सो भगवत गीता हमें बताती है स्वास्थ्य की सही परिभाषा। स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित होना। स्व में स्थित होने के लिए हमें स्व को जानना बहुत आवश्यक है। स्व अर्थात मैं। अब ये मैं क्या है? अगर मैं को शरीर माने तो एक दिन ये शरीर समाप्त हो जाएगा। मैं को मन बुद्धि माने तब भी जीवन के समाप्त होने पे ये समाप्त हो जाएंगे। परंतु अगर इस स्व को हम आत्मा माने जो कि कभी जिसका नाश नहीं होता, ऐसी आत्मा सही में स्व है। तो स्व में स्थित होने का अर्थ है कि हम आत्म साक्षात्कार के लिए कार्य करें, अर्थात कि अपने को जीवन के कर्तव्यों के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक चेतना पर भी कार्य करें। इससे हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, तनाव से मुक्त रहेंगे। हरे कृष्णा।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

लोग कहते हैं कि पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। मैं कहता हूं कि ईश्वर पर विश्वास रखो, बुरा वक्त कभी नहीं आएगा। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादी का। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हरे कृष्णा, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा। आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि भगवद गीता एक बहुत सुंदर चीज हमें बताती है। यह हमें बताती है कि आप जीवन में कभी भी आपका रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, परंतु हमारे साथ एक छोटी सी परेशानी है कि हम रिजल्ट के लिए ही कार्य करते हैं और इसीलिए आगे जाके फ्रस्ट्रेशन मिलता है। जैसे कि किसान अपना खेत में बीज बो सकता है, परंतु वो वर्षा नहीं ला सकता। इसीलिए हम अपने कर्म को बहुत ईमानदारी से कर सकते हैं, परंतु जो रिजल्ट है वो भगवान फाइनली हमें देते हैं। इसीलिए मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, इसको हमेशा याद रखें कि डू योर बेस्ट एंड लेट कृष्णा डू द रेस्ट। हरे कृष्णा।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: राम राम, दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की। मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से जिसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। बहुत कुछ खास होता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जनाब अली, ये खास प्रोग्राम आपको कैसा लगता है? 01204060205 पर आप मुझे कॉल कर बता सकते हैं, यानी कि शहर का STD कोड लगाना ना भूलेगा, 120 नंबर हो जाता है 40602005, इसके जरिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM@sharda.ac.in पर आप हमें मेल कर सकते हैं, और कभी लगता है कि एक मुलाकात बहुत जरूरी है तो आप हमसे मुलाकात भी कर सकते हैं। कहा जाता है वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर। शारदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय और दिल भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब लोग आते हैं तो हम उनसे बेझिझक मुलाकात करते हैं और मुलाकात का जो सिलसिला लगातार आगे बढ़ता ही चला जाता है। ऐसे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक खास मेहमान है। कौन है, कहाँ से है, बड़े ही खूबसूरत दोस्त है, उनसे हम बातें करेंगे, बताएंगे जरूर कि वो कौन है। सो कहीं जाएगा मत, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जब कम्युनिटी रेडियो स्टेशन का जिक्र होता है तो जाहिर सी बात है वो सारी बातें हम यहां से कर रहे होते हैं, जैसे कि बिंदास सुबह में बिंदास बोल बिंदास बातें, पढ़ने पढ़ाने की बातें, जिंदगी को जीने की बातें, खुश रहने वाली बातें, डॉक्टर्स की बातें, बहुत कुछ खास हम लेकर आ रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए, जब बिंदास बातों का जिक्र किया है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पढ़ने पढ़ाने की बातें होंगी और बातें होंगी स्टूडेंट्स के बारे में, बातें होंगी जिंदगी को किस तरीके से बिंदास जिया जा सकता है। तो खैर, फाइनली आज हमारे साथ हमारी एलुमनाई जुड़ रही हैं, जिनका बड़ा ही खूबसूरत नाम है, नाम मैं आपको बताऊंगा जरूर, लेकिन उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। 2018 पोस्ट बीएससी की आप पास आउट स्टूडेंट हैं और इनका जो कोर्स कंप्लीट हुआ 2020 में, 2020 में ये कोर्स कंप्लीट हुआ और ये अपने देश बांग्लादेश चली गई और इस वक्त प्रेजेंट टाइम में आप वर्किंग वुमेन हैं, क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के आप प्रेसिडेंट हैं, साथ ही साथ इसके बाद कुछ प्लान है इनके। और कोविड के समय की अगर हम बात करें तो कोविड के समय में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। फाइनली ज्यादा इंतजार नहीं करा था, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शारदा विश्वविद्यालय की एलुमनाई शहजादी, वाकई बहुत ही खूबसूरत नाम है शहजादी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस्तकबाल।
1: थैंक यू सो मच। आई एम शहजादी, आई केम फ्रॉम बांग्लादेश एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट विद यू।
0: मैं भी बहुत खुश हूँ शहजादी, क्योंकि जब मैंने सुना कि शहजादी आ रही है, बांग्लादेश की शहजादी आ रही है, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे साथ माधवी जुड़ रही है जो कि SNSR फैकल्टी एलुमनाई कोऑर्डिनेटर हैं शारदा विश्वविद्यालय में। जब वो मुझे बता रही थी कि शहजादी आ रही है तो मेरा सवाल ये था कि ये कहाँ की शहजादी है?
1: बांग्लादेश
0: की शहजादी है। तो माधवी मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: मुझे बताइए कि ये जो आपने एलुमनाई मीट के बारे में डिस्कशन किया या जो सोचा, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आप प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से काम कर रही होती हैं?
1: सर, जैसे शारदा विश्वविद्यालय हर साल हम स्टूडेंट को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यहाँ पर पढ़े, एक्सपीरियंस ले, ग्लोबल एक्सपीरियंस ले। जब वो पढ़ के अपना कोर्स कंप्लीट करके यहाँ से जाते हैं तो हम एक एलुमनाई कनेक्ट करते हैं उनसे कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करके यहाँ के जो उन्होंने जो एक ज्ञान एक गुरुकुल में जो एक्सपीरियंस किया है वो कैसे वर्ल्ड वाइड उस नॉलेज को सोसाइटी के साथ कैसे शेयर कर रहे हैं और क्या क्या अचीवमेंट ली है और शारदा विश्वविद्यालय का नाम कैसे आगे लेकर गए हैं, बिकॉज दे आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ शारदा
0: यूनिवर्सिटी। राइट, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ। सो थैंक यू सो मच माधवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी रही और आपने बहुत अच्छी बात हमें बताई कि किस तरीके से इस प्लानिंग के तहत आप आगे बढ़ रही हैं। शहजादी, यहाँ पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैं बातों का जो सिलसिला है लगातार आपके साथ जारी रहेगा। सो लिसनर्स कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ रही हैं शहजादी जो कि बांग्लादेश से हैं और 2018 की आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग पास आउट स्टूडेंट हैं, 2020 में इनका कोर्स यहां से कंप्लीट हुआ और वर्तमान समय में बहुत अच्छा काम कर रही हैं और आप प्रेसिडेंट क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की आप प्रेसिडेंट भी हैं, साथ ही साथ फाउंडर भी हैं। इनसे बहुत कुछ जानेंगे मगर छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जाहिर सी बात है कि जब एक स्कूल कॉलेज हमें अच्छा मिल जाता है तो वाकई बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा लगता है कि वहां की फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, पढ़ने पढ़ाने का माहौल अच्छा है, करिकुलम एक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत कुछ हम यहाँ से सीख रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं। और फाइनली एक दिन आता है रुखसती का, विदा होने का, उसके बाद अपना सिलसिला शुरू होता है कि मुझे क्या करना है, किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें कर रहा हूं। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी एलुमनाई हैं शारदा विश्वविद्यालय की बीएससी नर्सिंग डिपार्टमेंट से शहजादी, जो कि बांग्लादेश से हैं। तो शहजादी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस रहा शारदा यूनिवर्सिटी का, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा?
1: मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि इधर का शारदा का जो है बोलती है वर्ल्ड इज हियर, मेरे को सच्ची में लगती है वर्ल्ड इज हियर, क्योंकि इधर में अगर हम इतना दूर से आया है, इधर का जो फैकल्टी है बहुत लगता नहीं है फैकल्टी है, लगता है हमारा फैमिली का मेंबर है। तो उसके हमारे साथ जितना भी इंस्पायर किया, सब कुछ में हेल्प करती है बहुत ज्यादा अच्छी से। लेकिन मैं इतना दिन मैं बहुत अच्छी से रहा इधर में, और हम जब बाहर में रहती है, माई पेरेंट्स आर फ्रॉम यूके, सो उधर में हम लोग क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है,
0: इंडिया का सीरियल,
1: इंडिया का सीरियल, दिल्ली का क्राइम पेट्रोल बहुत ज्यादा देखती है। तो वो लोगों ने बोला क्राइम इधर में जाओगी कैसे रहेगी, उसको इतना ट्रस्ट नहीं था, उसको कॉन्सेप्ट कुछ अलग था, कोई भी नहीं आना चाहती थी हाँ इधर नहीं आएंगे। लेकिन जब मैं इधर में एडमिशन हुआ, मेरा पापा मम्मा ने देखा है, और इधर का जो सिक्योरिटी है, इतना भी क्राइम पेट्रोल हो जाए लेकिन शारदा का जो सिक्योरिटी है, जाकार्ता जो लोग है, सब कुछ बहुत बढ़िया है। तो मेरा जो फैमिली का जो एक कंसेप्ट था, हाँ उधर में बहुत ज्यादा क्राइम पेट्रोल होती है, लेकिन उसको चेंज हो गया, उसको अभी वो रिस्पेक्ट करती है, हाँ बहुत अच्छा कंट्री है, अच्छा जगह है, और शारदा तो बेस्ट है।
0: वाओ नाइस क्लैपिंग, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत, आपने अच्छी तरीके से इसको डिफाइन किया कि इसीलिए कहा जाता है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर। और जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया, मुझे ये सुनकर वाकई बहुत खुशी हुई, क्योंकि क्राइम पेट्रोल जब आप देखा करती थी तो लोगों के दिमाग में यही था, जो कि आपने बताया कि पेरेंट्स ऐसा सोचा करते थे, आपके जानने वाले सोचा करते थे कि अगर आप इंडिया जाएंगी तो वहां इस तरीके का क्राइम होता है, कहीं आपके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए। लेकिन आपने कहा कि यहाँ का माहौल अच्छा है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। तो ये सुनकर शहजादी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपके साथ जो बातों का सिलसिला है बहुत अच्छा होने वाला है। सो लिसनर्स, आप कहीं जाएगा बहुत बड़ी ही खूबसूरत एलुमनाई है, और किस तरीके से खूबसूरती के साथ इन्होंने शारदा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है, ये उनके खुद के विचार हैं। और क्या है आगे जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और मेरे साथ जुड़ी हुई है शहजादी मल्लिकाय फ्रॉम बांग्लादेश।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे साथ जुड़ी हुई हैं शहजादी बांग्लादेश से और आप यहां की एलुमनाई हैं, BSc नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी हैं, 2020 की पास आउट हैं। तो शहजादी, एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है।
1: ओके।
0: पढ़ने पढ़ाने की हमने बात की थी, अब हम बात करते हैं कि यहाँ की जो करिकुलम एक्टिविटीज में आप पार्टिसिपेट करते थे, कैसा लगता था और उसके बारे में थोड़ा सा बताइए ना प्लीज।
1: हाँ, जितना भी करिकुलम था वो तो बहुत बढ़िया था, क्योंकि मैं इधर का जो फैकल्टी है या टीचर है हमारा, वो सब कुछ लगता है वो हमको बच्चे जैसा हर टाइम हमको पास रखती है, जो भी होती है डांटती है। तो उस टाइम मेरे को स्ट्रेस भी आया, ये लोग बहुत डांटती है, ये लोग बहुत ज्यादा काम कराती है। लेकिन फिर बाद में स्लोली स्लोली जब मेरे को अचीवमेंट होती है तब लगता है नहीं, ये तो मम्मी जैसा ही वो करती है। तो इसमें मेरे को बहुत अच्छी लगा, ये लोग बहुत हमको प्यार करती है, हमको डांटती है तो हमके भलाई के लिए डांटती है। तो इसलिए मैं जितना भी पार्टिसिपेशन हुई है इधर में, उसने इनकरेज किया, हाँ तुम इसको करो, ये करो, अगर फेल हो और विन हो वो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम अगर एक्सपीरियंस लोगी तो तुम्हारा लाइफ के लिए अच्छा होगी। तो इसने बहुत, इधर का जो भी फैकल्टी है, मेरा नर्सिंग का जो फैकल्टी में उसको हर टाइम मिस करती हूँ। इधर का बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, हमारा दीन, हमारा माधुबी मैम, वो तो मैं जब उसको पहली बार देखा यूनिवर्सिटी में, उस टाइम मेरे को नहीं जानता क्योंकि मैं पहले एक महीने पहले आया इधर में, फिर मैं इंटरनेशनल डिविजन में काम किया कंप्यूटर का। तो उस टाइम एक महीने के बाद ही मेरा स्टडी शुरू हुआ है नर्सिंग का, तो उसको पहले मैं देखा है हॉस्टल में, तो इतना अच्छी था, वो नहीं जानती मैं उसका स्टूडेंट हूँ, मैं भी नहीं जानती हूँ मेरा टीचर है।
0: ओह माय गॉड, बहुत खूबसूरत इंसिडेंट हुआ आपके साथ।
1: इंसिडेंट हुआ। और उतने माध्यमिक मैम में बहुत अच्छी है एक्चुअली, के लगता है मेरा खुद का बहरा बहन है, मेरा कोई बड़ा बहन नहीं है, हम तीन ही बहन है, तो मेरे को लगता है वो मेरा बहन जैसे है, मैडम से ज्यादा बहन लगता है।
0: शहजादी, बाकी आपके जो विचार है, आपके जो थॉट्स है, मैं जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत खूबसूरती के साथ अपने शब्दों को आप बयां कर रही है कि जो जो आपने फील किया, चाहे वो फैकल्टी साथ आपके रिश्ते की बात हो। हाँ। आपने जहां काम किया और आपको नहीं पता कि सामने वाला जो क्लाइंट है मेरे ही टीचर होने वाले हैं, उनके साथ जो संबंध रहे, रिलेशन आपके रहे, वो भी आप बयां कर रही हैं बड़ी खूबसूरती के साथ, अपनी बातों को आप यहां रख रही हैं हमारे लिसनर्स के सामने। तो उसके बाद जो सिलसिला रहा, यहां से जो आपने सीखा, समझा, दोस्तों के बारे में आप मुझे बताइए कि यहां के दोस्त आपके साथ जुड़े बने, यहां का कल्चर आपने क्या डिफरेंट पाया।
1: एक्चुअली क्या है, हमारा कंट्री और इंडिया में इतना फर्क नहीं है,
0: समान
1: है, एक ही था। हाँ। क्योंकि एक ही था। हाँ। अगर आप हमारा जो प्राउड है, हमारा जो 1971 में जो फाइटिंग हुआ है, उसमें अगर बहुत बड़ा हेल्प एंड योगदान है तो वो हमारा इंडिया का है, क्योंकि उस टाइम जो इंदिरा गांधी मैम था, उसके से हमने हेल्प करके हमारा देश को जीता है। तो इसका हमका बड़ा दान है इधर में। तो इंडिया का हमारा लगता नहीं है हमारा दूसरा कंट्री, लगता है हमारा घर ही है,
0: बहुत खूबसूरत।
1: और उधर का जो लोग होती है, हमारा इधर का जो लोग होते हैं, सब सेम होती है। इधर का जो भी हॉस्पिटलिटी है और जितना भी लोगों को खुद अपना समझती है, उधर में भी सेम है, कोई फर्क, इतना फर्क नहीं है।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, हम सबको अपना समझती है, क्या बात है, ये जो एक्सेंट आ रहा है बहुत अच्छा आ रहा है। इसके बारे में ऑफ एयर आपसे बात हुई थी कि ये जो एक्सेंट आ रहा है, क्या बांग्लादेशियों का ऐसा है या आपका है तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में शहजादी से हम जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो आप कहीं जाएगा मत, मेरे साथ जुड़ी हुई है, पोस्ट BSc नर्सिंग की आप स्टूडेंट रह चुकी है, आप एलुमनाई है और बहुत अच्छा काम कर रही है, प्रेसिडेंट फाउंडर भी हैं आप क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी के, इसके बारे में भी जानेंगे जरूर, मगर छोटे से अंतराल के बाद। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस्तकबाल। आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शाता 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
1: आले मेरे को भूल गए तुम, अगर कोई अच्छे अच्छे स्टूडेंट आते हैं खुद ही बात करने लग जाते हो, मेरे को पीछे रख दिया तुमने। मेरे को ये क्या बोलते है?
0: दिल।
1: हाँ दिल दुखा है मेरा, बहुत ज्यादा दिल दुखा है। मतलब इतनी प्यारी शहजादी स्टूडेंट आई है, तुम खुद ही बात करने लग गए।
0: नहीं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, तुम्हें भी मैं इंट्रोड्यूस करा था।
1: नहीं, मेरे को इंट्रोड्यूस कब कराओगे शहजादी बेबी? हाय, हाउ आर यू?
2: आई एम फाइन, हाउ आर यू?
1: देखो गगन ना खुद ही बात कर रहे थे, मेरे को नहीं लेकर आए थे, मेरा बहुत दिल दुखा है, मेरे से बात करो ना।
2: मैं गगन से सॉरी बोल रही हूँ आपके लिए।
0: देखा बहादुर, आपसे शहजादी बात कर रही है, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं।
1: हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो तुमने एक्सेंट मार नहीं रहे थे, और जो तुम बोल रहे थे, क्या बांग्लादेश में ऐसे ही बोलते हैं या कहीं से बाहर से आपकी परवरिश हुई है? कौन सा देश है बताओ ना। हम
2: हाँ, मैं क्या है, मैं बांग्लादेश से हूँ, लेकिन मैं जब छोटा था तब मेरा फादर सिविल इंजीनियर।
1: बेटे अभी भी तुम छोटे हो, कौन से बड़े हो गए?
2: आपसे तो छोटी ही हूँ।
1: आले मेरे को इतना बुजुर्ग ना बनाओ बेटा। हाँ तो अब मुद्दे की बात पर आओ।
2: ठीक है, तो मेरा फादर ने इंजीनियर था, तो उसने सऊदी में गया।

0: था, तो उसके बाद हम लोग जो फुल फैमिली है वो उधर में शिफ्ट हो गया, तो उधर में मेरा स्कूलिंग हुआ है। उधर के बाद मेरा फैमिली लंदन में आ गया, तो उधर का मेरा फादर को गवर्नमेंट से सब कुछ मिल गया, तो उधर में चला आया, अपॉर्चुनिटी, गुड अपॉर्चुनिटी, तो हम लोग उधर में रहा। फिर मैं इंडिया में रहा, मैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो है बैंगलोर में, उधर में स्टडी किया, तो उसके बाद मैं नर्सिंग में आया। तो इसलिए मेरा एक्सेंट सब फ्रेंड्स वगैरह सबको साथ एक साथ रहने के कुछ अलग हो गया।
1: अब मैं जहाँ हूँ गगन,
2: मतलब क्यों,
1: अरे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत भ्रमण किया इन्होंने, मैं इनके सामने बैठ ही नहीं पा रहा। मतलब यूके घूम कर आई है, लंदन घूम कर आई है, और मतलब सब जगह घूम लिया इन्होंने तो।
2: हाँ, ये बहुत पढ़ी लिखी और बहुत पहुंची हुई है, मतलब हर जगह का इन्होंने पानी पिया है और बहुत समझदार है।
1: हाँ, मैं अब तुम ही बात कर लू।
2: तो खैर, बहादुर को मैंने एक तरफ रख दिया शहजादी। मुझे ये तो रही बात आपकी, अलग अलग देशों में आप गई हैं, बहुत कुछ आपने सीखा है समझा है, कब आपको लगा कि यार मुझे अपना कुछ करना है? जैसे आप खुद मुझे बता रही थी कि आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, तो इसके बारे में दिमाग में कब आइडिया आया?
0: हाँ, इसमें उस टाइम में मैंने जब नर्सिंग का डिप्लोमा किया था, डिप्लोमा करने के बाद मैं एक प्रोग्राम था, मेरे को सीखना है, मेरे को जानना है इस दुनिया में क्या हो रही है, तो मेरे को जो नर्सिंग में आया हो तो मैं नर्सिंग में बहुत बड़ा होना चाहती थी। तो इसलिए क्या हुआ, मैं एक डॉक्टर को एक कॉन्फ्रेंस था, उस कॉन्फ्रेंस में मैंने बोला मेरे को इधर में रेफरेंस रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसने मेरे को बोला तुम रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकती क्योंकि तुम नर्स हो, तुमको इधर में
2: का वाक्य है,
0: एक बांग्लादेश का था,
2: बांग्लादेश का,
0: हाँ, तो बांग्लादेश का था, तो उसने बोला जो तुम नर्स हो तुमको इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हारा जो भी स्टडी वगैरह जो भी है इधर में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला आप जो स्टडी करा रही हो वो एक टॉपिक है रेस्पिरेटरी के लिए कर, तो वो बहुत अच्छा टॉपिक था, तो मेरे को वो सीखना था। तो उसने बोला नहीं, ये तुम्हारा टॉपिक नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है चलो। तो मैंने सोचा अगर कोई बांग्लादेश में, मैंने सोचा अगर उसका कॉन्फ्रेंस हो सकती है, डॉक्टर का अगर सोसाइटी है बांग्लादेश में, तो नर्स का क्यों नहीं होगी। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, मैं नर्सिंग सोसाइटी बनाऊंगी। तो मैंने मेरे चार फ्रेंड को बोला, उसने बोला ठीक है चलो।
2: फ्रेंड्स के नाम भी बताइए।
0: हाँ, मेरा फ्रेंड का नाम है नाहिदा, दूसरा फ्रेंड का नाम है सलीम, और तीसरा फ्रेंड का नाम है आयशा। तो मैंने इन तीनों को बताया, उसको बोला कि हम लोग ये करना चाहते हैं। उसने बोला
2: दोस्तों ने मिलकर ही,
0: हाँ, उसको उसने बोला तुमको पागल हो गया, तुम ऐसे के ऐसे करोगे, बहुत बड़ा फाउंडेशन है, ये नहीं कर सकती। तो मैंने बोला कोई बात नहीं है, मैं कर लूंगी, तुम साथ मेरे साथ रहना। तो उसने मेरे को हेल्प किया, हाँ, सपोर्ट किया है, तो उसको सपोर्ट से मैं बनाया। मैं हर जगह में हर नर्स को पास गया, कोई नर्स मेरे को उस टाइम उतना प्लेस नहीं दिया। उसने बोला ये क्या है, तुम क्या करोगी, हमको नहीं करने है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, ऐसे बोलते थे। तो मैंने उस टाइम सैलरी मेरे को मिलता था 20,000 रुपीज। तो उसने मैंने क्या किया, मेरा जो 5% मीन 55,000 आई कीपिंग फॉर माई गोइंग एंड कमिंग, एंड 15,000 मैंने इसमें खर्च किया। तो इसमें खर्च करके इसको थोड़ा सा बनाया। फिर मैंने हमारा कंट्री का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको साथ मिला, उसको से हमारा जो सोसाइटी है उसको इनोग्रेट किया। तो बांग्लादेश का हेल्थ मिनिस्टर से हमको रजिस्ट्रेशन लिया, और ये जो क्रिटिकल केयर सोसाइटी है ये बांग्लादेश में एक ही सोसाइटी है जिसको रजिस्ट्रेशन मिला।
2: क्या बात
0: है,
2: क्लैपिंग बनती है, बहुत खूबसूरत शहजादी, बहुत अच्छी जर्नी आपकी रही है। हाँ, बहुत अच्छा एक स्ट्रगल।
0: सिर्फ ऐसे ही नहीं किया, उसको करने के बाद मेरे को सोचा ठीक है बांग्लादेश में कर लिया, अभी मेरे को इंटरनेशनल भी इसको दिखानी है। तो इसको दिखानी है, तो बांग्लादेश में जितना भी हमने ऑलरेडी 500 स्टूडेंट को मैंने वर्कशॉप किया, उसको सिखाया फ्री में। हमारे जो ये सोसाइटी है उसमें हम किसी से पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ दुआई लेते हैं।
2: बहुत खूबसूरत।
0: और क्या होती है, हम जितना भी हॉस्पिटल में जाती हूँ उसको हम फ्री में सबको सिखाती है, सब कुछ करते हैं, सिर्फ उसमें उसको टाइम देती है हमको, तो उस टाइम में हम सिखा देते हैं। तो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट 85 स्कूल हॉस्पिटल में कर लिया है इससे काम। अभी 5,000 नर्स है जिसको क्रिटिकल केयर के बारे में सब कुछ आती है। तो उस टाइम मैंने एक बार मैं एमिरेट्स से नेपाल में गया, नेपाल में जाने के बाद उसको इंटरनेशनली मेरा जो लोगो है ना उसको बारे में बताऊं। जब मैं फाउंडेशन किया तब मैं गया वेबसाइट खोलने के लिए, लोगो बनाने के लिए, तो उसने बोला लोगो बनाऊंगी तो 30,000 रुपी लगेगी। मैंने बोला मैं तो कमाती हूँ 20,000, तो 30,000 कैसे करेंगे। होंगे. तो मैंने बोला अगर इस लोगो को बनाना सीखने में कितना लगती है. तो उसने बोला 1,000 लगती है. तो मैंने बोला ठीक है मैं सीख लूंगी 2 महीने में. तो मैंने ग्राफिक डिजाइन और इंटीरियर जो भी है उसको सीखा. उसे सीखने के बाद फिर मेरा खुद का लोगो मैंने खुद बनाया है.
2: क्या बात है, ग्रेट ग्रेट शहजादी, रियली नाइस टॉक टू यू. मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई.
0: उसको बनाया, उसको बनाने के बाद फिर मैं इंटरनेशनल नेपाल में गया. उधर में हमारा लोगो उधर उसको जो कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें डाला. फिर उसके बाद मैंने एमिरेट्स में गया. एमिरेट्स प्राइम मिनिस्टर के हमको अवार्ड रिवॉर्ड दिया उधर से. तो उधर के भी लेकर गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में लेकर गया. फिर श्रीलंका में लेकर गया. हमारा सोसाइटी को होल्ड अभी सब जानती है. हाँ, एक अच्छा सोसाइटी है.
2: बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शुभकामनाएं शहजादी आपकी सोसाइटी के लिए, आपके लिए. आपका भविष्य उज्ज्वल रहे. आपकी जो मुरादें हैं नेक मुरादें, इंशाल्लाह ठाकुर जी भगवान आपकी मुरादें पूरी करें. आपसे बात करके वाकई मुझे बहुत खुशी हो रही है. और मैं आशा करता हूँ कि जो हमारे लिसनर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इंस्पायर हो रहे होंगे कि जब आप कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते. एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है. एक रणनीति के तहत अगर इंसान आगे बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर आफ्टर सम टाइम वो अपनी मंजिल को पा ही लेगा.
1: हाँ देखो बेटा, मैं इसीलिए बात नहीं कर रहा था. बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ये, बहुत दूर दूर तक घूमे. लेकिन गगन एक बात कहना चाहता हूँ.
2: हाँ?
1: कान लाओ. ये मैडम कह रही है कि हम दुआएं लेते हैं. पैसा
2: मतलब
1: पैसा मुझे दिलवा दो ना.
2: बादो तुम हमेशा ऐसी नोटी वाली बातें करते रहते हो. खैर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत दुआएं हैं शहजादी. कुछ और बातें जानेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ. और मेरे साथ जुड़ी हुई है बहुत ही टैलेंटेड खूबसूरत शहजादी जो कि यहाँ की पास आउट हैं. खूबसूरत इसलिए क्योंकि उनके दिल के विचार बहुत ही खूबसूरत हैं. खूबसूरत इसलिए कि लोगों की दुआएं लेती हैं, पैसे नहीं लेती. खूबसूरत इसलिए कि बहुत अच्छी जानकारी है और बहुत कुछ सीखना समझना चाहती हैं. तो शहजादी हैं मेरे साथ, जानेंगे जरूर और आगे की बातें, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद. कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ.

0: अल्लामा इकबाल साहब का बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरी यानी गगन के साथ। और इस वक्त शहजादी बांग्लादेश से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और यहां की आप एलुमनाई रही हैं। आपने बीएससी नर्सिंग का कोर्स किया 2018 से 2020, ये एक समय था। और इसके बाद इन्होंने खुद का अपना एक, आप प्रेसिडेंट भी हैं, फाउंडर भी हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग सोसाइटी की, ये इनकी सोसाइटी है। और बहुत कुछ इनकी जर्नी के बारे में हमने जाना है, स्कूल के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, इनकी लाइफ के बारे में। अब हम आते हैं एक ऐसी खास बात के बारे में जिक्र करना चाहते हैं। कोरोना का समय ऐसा समय रहा कि जिसकी वजह से सब लोग परेशान रहे, लेकिन कहते हैं ना कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, ईश्वर खुदा कहीं ना कहीं हमारी मदद कर रहा होता है। तो ऐसे ही कुछ शहजादी ने सोचा और लोगों के बीच में गई। क्या रहा वो कोविड का समय, किस तरीके से इन्होंने लोगों की मदद की, किस तरीके से इनका वर्क एक्सपीरियंस रहा, शहजादी अब आप प्लीज मुझे इसके बारे में बताइए।
1: हाँ, कोविड का जो टाइम आया था वो हमारे इस वॉल के लिए बहुत खतरनाक का था, टाइम था। सबने डरती थी, सबने घर से बाहर नहीं आया। अगर उस टाइम में मैंने जब स्टडी मेरा पास आउट हो गया तो मैंने बांग्लादेश चला गई। जाने के बाद मैं कोविड में स्टार्टिंग किया, काम किया। कोविड का जो फुल आईसीयू है, 50 ICU है, उसमें मैंने इंचार्ज था, उसका इंचार्ज था, उसके काम किया। मैंने खुद भी 4 बार कोविड से आक्रमण हुआ है।
0: Oh my God.
1: तो पहले बार जब हुआ था तब तो कोविड का काम करते करते, क्योंकि हमारे उधर का हार्ट का पेशेंट आती है, कोविड भी है, उसका हार्ट रिलेटेड भी प्रॉब्लम आती है और दूसरा रेस्पिरेटरी। तो उस जो टाइम था, उस टाइम मेरे को एक ही सोचना था कि मेरे को इसको बचानी है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं कोविड का ओपन ड्रेस जो था उसको ओपन करके मैं खा रही थी, तो उस टाइम एक बच्चा ने मेरे सामने आकर बोले मेरा पापा अभी अंदर गया है, वो क्या बचेगी मेरा पापा, क्योंकि मैं खो दूंगी। तो वो मेरा दिल में चला गया। तो मैंने सोचा, उसका हार्ट अटैक आया था, उसको कोविड पर था, हार्ट अटैक था। तो उस टाइम मैंने खाना सिर्फ लेंगे, तो मैंने उसको उधर के छोड़ के मेरा कोविड का ड्रेस भी नहीं पड़ा। मैंने बोला कोविड का ड्रेस पड़ने में 10-5 मिनट लगेगी, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अगर उसको सेव नहीं करूंगी तो ये बच्चे को, इसको पापा चला जाएगी। तो हमने गया उधर को, उसको CPR दिया। CPR देने के बाद, कोविड का पेशेंट को CPR देना मना है, क्योंकि CPR देंगे तो एक्सप्रेस होगी उसमें, इसलिए जो वायरस फैलेगी, क्योंकि उसको कवर करके सेव करनी है। तो मैंने बोला वो सब डॉक्टर जो था उसने बोला हम नहीं करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कर लेंगे, मेरे को बचाना है इसको। तो उसको ना 25 मिनट कंटिन्यू किया, लेकिन फिर भी नहीं आया। तो मैंने, मेरा हौसला नहीं छोड़ा, मैंने बोला फिर 10 मिनट करेंगे, फिर देखेंगे क्या होती है, क्योंकि उसको बच्चा जो रोती है ना, वो मेरे दिमाग में खेल रही थी। तो मैंने फिर 10 मिनट किया, फिर एट द लास्ट 7 मिनट ही कम बैक।
0: आए हाय माशाल्लाह।
1: तो
0: उसमें तुम्हारे चरण कहाँ है शहजादी, तुम्हारे चरण कहाँ है, तुम जीत गए, तुमने हमारा दिल ले लिया। मतलब कितना अच्छा काम कर रही है। देखो, किसी की जिंदगी लाना बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं गगन। हाँ वाकई ये नेक काम किया, मेरी आंखें भी नम हो गई शहजादी, जिस तरीके से बहादुर अपनी बात रख रहे हैं कि आपने दिल जीत लिया कसम से हमारे बहादुर का, हमारे श्रोताओं का, कि किसी की जिंदगी देना बहुत बड़ी बात है। और आपकी बातों से मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हौसला अगर आपका बुलंद है तो निश्चित तौर पर वो काम हो ही जाता है। आपने 25 मिनट तक CPR दिया, उसके बाद 10 मिनट तक फिर आपने दिया, आप थकी भी होंगी, तो कैसा रहा वो पीरियड?
1: वो जो पीरियड था उसमें ना मेरे को इतना थकान नहीं लगा। उसने मेरे को एक ही चीज था, जो वो जो आदमी था वो 35 का था और उसका बच्चा 5 का था, बहुत क्यूट था।
0: Oh my God.
1: तो और उसको बीबी भी 17 का है। हमारा कंट्री में मुसलमान जल्दी शादी कर लेते हैं, तो एक बच्चा, एक 17 ईयर्स का लड़की, उसको आहार देख रही है और उसको बचाएंगे तो मैं नर्सिंग में क्यों आई? तो यही मेरा था। तो मेरे को था, मेरे को जो, हाँ मेरे को अगर CPR 5 मिनट देती है तो उसको हैरान हो जाती, वो नहीं दे सकती। लेकिन मैंने बोला मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे साथ और भी एक ब्रदर था, उसका नाम है रकीब, तो उसने भी किया। उसने बोला आप इतना मत करो, मैं कर रही हूँ। तो उसने कर रही है, मैंने बोला मेरे सेटिस्फाई नहीं रहा हूँ। मैंने बोला मैं CPR का आहार से मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उधर से एक्रीडेशन उसके उधर में पास किया है। तो मैंने बोला मैं CPR का रजिस्टर नर्स हूँ फ्रॉम आहार से, तो मेरे को करना है, मैं तुमसे सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को कोई हाल में इसको बचानी है। और उस टाइम मैं उसको कर रही थी और मेरा को मुसलमान का जो धर्म का जो प्रेयर होती है वो भी पढ़ रही थी उसके लिए। तो उसको दोनों करके फिर जब वो आया, जब उसको उसको बीट हुआ, तब मेरे को एहसान आया, अभी मैं खुश हो गया। लाइफ में कुछ करती है तो उसमें अगर सुकून मिलता है, और लोगों को जब भी मैं कोई प्रॉब्लम में देखती हो, कोई दिक्कत में देखती हो, अगर उसको कुछ कर सकती हो, उसको हंसी दे सकती हो, तो मेरा लगता है ये मेरा बहुत
0: बहुत खूबसूरत शहजादी। रियली रियली मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से दिल से दुआएं हैं आपके लिए, क्योंकि ईश्वर ने, अल्लाह ताला ने अगर आपको जमीन पर इस काम के लिए भेजा है, आप बेझिझक लोगों की मदद करिएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के पास सिर्फ दुआएं ही होती हैं, रुपया पैसा नहीं होता। आप इस काम को करते वक्त कभी ये मत देखिएगा कि ये अमीर है गरीब है, इस काम को निस्वार्थ तरीके से करेंगे तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छा होगा आपके लिए, सोसाइटी के लिए। रियली रियली रियली रियली नाइस टॉक टू यू शहजादी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करकर, और आपकी मुरादें पूरी होती जाएं, आप अच्छा करें, बेहतर करें, और बस दुआओं के अलावा और कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ और कहना चाहती हूँ तो आप कह सकते हैं।
1: मैं कहने चाहती हूँ कि हमारा कंट्री में बहुत ये बच्चा जन्म लेती है, इंडिया में भी लेती है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होती है, जब जन्म के बाद ही उसका हार्ट का प्रॉब्लम है, उसका ऑपरेशन करने में 2-3 लाख लग जाती है, इंडिया में भी लगती है, बांग्लादेश में भी लगती है, तो उस तरह बच्चे को पास इतना पैसा नहीं होते जितना उसको लगेगी, कोई की है गरीब है, बहुत गरीब है, उसको नहीं लगती है। तो एक तुर्की का एक कंपनी है और सऊदी अरब का एक कंपनी है, जो उसको ये एनजीओ है उसमें हेल्प लेकर, हमारे बांग्लादेश में एक डॉक्टर और मैं भी उसके साथ शामिल हूँ, तो उसमें मैं नर्सिंग का फ्री जो उसका जो 10 दिन का केयर होती है वो मैं फ्री में देती हूँ उसको, सब कुछ मैं करती हूँ, और जो डॉक्टर का ऑपरेशन वो करती है। तो उस तरफ का हम लोग जितना भी बच्चा है जिसका भी हार्ट प्रॉब्लम है उसको फ्री में कराती हूँ। अब 400 बच्चे को ऐसे कर लिया
0: अपनी सिटी में करा, हाँ, देश
1: हमारे
0: में करा।
1: देश में किया, आपका इंडिया में भी करा, आपका इंडिया में जो छत्तीसगढ़ है उधर में एक हार्ट इंस्टीट्यूट है, तो उधर में भी हमारा डॉक्टर है, हमारा जो उधर का जो टीम है उसको साथ हमको एक साथ काम करती है। अगर इंडिया में भी ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है लेकिन उसको पैसा नहीं है, तो वो छत्तीसगढ़ जो हॉस्पिटल है हार्ट का, तो उधर में जा सकती है।
0: अच्छा, ग्रेट। शहजादी मुझे एक चीज बताइए, कोई अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे, कोई अगर आपसे जुड़ना चाहे, शहजादी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो शहजादी का सोशल मीडिया एक जरिया हो सकता है या कुछ और दूसरा जरिया हो सकता है, अगर आप कुछ बताना चाहें तो किस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं?
1: हाँ, मेरे साथ मेरे फेसबुक का जो मेरा पेज है उसमें भी बात कर सकती है, मेरे इंस्टाग्राम है तो उसमें भी बात कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई की किसी को मदद लगेगी और कुछ कोई भी हेल्प, क्योंकि हम जानते हैं अगर मैं किसी का मदद करेंगी तो दूसरा बार अल्लाह ने मेरे को लिए कुछ भेजेगी मदद करने के लिए। एक्चुअली आई डोंट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी डाई, व्हेन आई डाई पीपल should have a smile on their face, that this is Shahzadi.
2: अरे बेटे, तुम मरने की बात क्यों कर रहे हो? तुम्हारे तो दिन अभी शुरू हुए, और तुम देखो जाना बेटा एक दिन सबको है, लेकिन तुम हमेशा जिंदा रहोगे, हमारे दिलों में रहोगे। शाबाश शाबाश मेरे लाल लगे।

0: देखो शहजादी है तो मैसे अरे नहीं शहजादी जो बहुत अच्छा काम कर रही है, आई लव यू शहजादी। ये बहादुर है, ये ऐसी सी बातें करते हैं। अरे प्यार करना कोई गलत बात है शहजादी, तुम बताओ?
1: नहीं, प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, प्यार तो दिल से करना चाहिए।
0: हाँ देखा तुम,
1: प्यार किया तो डरना क्या,
0: क्या बात है। शहजादी मेरी तरफ से रियली रियली रियली बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आप नेक काम कर रही है, सोसाइटी के लिए काम कर रही है, और बस यही प्रार्थना है परवरदिगार से कि आपका ये काम अच्छा चलता।
1: एक मैं बात बताओ, जब मैं कोविड में काम करने थे तब मेरे को जो नेदरलैंड है, नेदरलैंड ही हॉस्पिटल है, तो उसका जो हॉस्पिटल से मेरे को जॉब ऑफर आया था, उसका 4 लाख सैलरी था, और दूसरा आया था कनाडा से, तो उसमें भी मेरा हाई सैलरी था। तो मैंने सोचा अगर मैं इस टाइम में कोविड में अगर अच्छा सैलरी मिला, इस कोविड में सब मौका ढूंढती है तो इस मौका में चला जाएंगे तो मैं खुद को गिल्ट फील करेंगे, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस टाइम में, क्योंकि मेरे को उस टाइम कहाँ पे भी नहीं जाना था, मेरे को मेरा खुद का कंट्री का लोगों का हेल्प
0: करूंगा, क्योंकि मुझे भी यही समझ में आ रहा है कि जॉब में शायद बंद कर रह जाएंगे। ये काम अगर आज आप शुरू करेंगे तो बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके जरिए लोगों को मदद भी मिलेगी। तो मेरा पर्सनल ऐसा सोचना है कि जो आप काम कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, आप यूं ही करते रहें।
2: मुझसे दोस्ती करोगे शहजादी?
1: हाँ जरूर, क्यों नहीं।
2: वाह, मैं नंबर लेने वाला हूँ, तुम देखते रह रही हो।
1: ठीक है,
0: बहादुर नंबर आपसे जरूर एक्सचेंज करेंगे। तो शहजादी मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आपको कैसा लगा?
1: हाँ मेरे को आपके साथ बात करके बहुत अच्छी लगा, आपका बहादुर जो है उसको भी बहुत अच्छी लगी।
2: देखा मेरी तो निकल पड़ी, मजा आ गया, मैं फेमस हो गया। देखो गगन, बांग्लादेश जाऊंगा मैं, नीदरलैंड जाऊंगा मैं, जब जहाँ जहाँ जाएंगी मेरे बारे में बताएंगी कि वहाँ एक बहादुर है, मेरे को आई लव यू बोला था उसने।
0: चलिए जनाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहादुर को इन्होंने बहुत पसंद किया, आपके काम को हम सबने पसंद किया, दिल से एक बार फिर शहजादी आपके लिए बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं। माधवी के लिए कुछ कहना चाहेंगी? माधवी की वजह से हम लोग यहाँ हैं, हम लोग बात कर पा रहे हैं।
1: हाँ ये तो मैं पहले ही बोला, जब मैं उसको देखा था वो तब मेरे को पता नहीं था वो मेरा टीचर था, तो वो बहुत इंस्पायर करती है मेरे को, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग है जिसमें हमारे कंट्री में इंडिया में, तो आर्ट ऑफ लिविंग एक अच्छा चीज है जिसमें लोग जाएगी तो उसमें बहुत कुछ सीखेगी, तो उसको भी मैंने उसको से सीखा है, उसको वो मेडिटेशन जानती है तो उसे से मेडिटेशन सीखा है। देन जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम हुई, कोई दिक्कत हुई, तो मेरे को हर टाइम सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया है लाइक व्हेनेवर आई फॉल, लाइक यू नो दैट आई फॉल समवेयर लाइक आई एम ब्रेकिंग डाउन टू मच, आई हैव अ डिप्रेशन, एंड दैट टाइम शी वॉज इन फ्रंट ऑफ मी एज लाइक अ लायन, I feel like oh, there was a lion to come and save me. So this is the, she is like that, they always helping me as a lion. So I really appreciate her, whatever she's doing for me, this is really thankful.
0: Thank you so much Shahzadi, aur shukriya aapke liye Madhvi, bahut achhi baat aapke favor mein sunne ko samajhne ko mil rahi hai, baki aap bhi bahut acha kaam kar rahi hain, aur aise talent ko agar aap dhoond kar lekar aa rahi hain jo apne liye, apne desh ke liye, society ke liye acha kaam kar rahe hain, aur jo ki yahan ke Sharda ke alumni hain, so main aapka shukriya ada karna chahunga. कुछ और कहना चाहती हैं माधवी, आप कह सकते हैं?
3: हाँ, और जैसे आपने बताया कि एलुमनाई का है, तो एलुमनाई में हमारे जो मेन जो एक यूनिवर्सिटी लेवल पर जो सेल वर्क करता है, जो मेन इसकी लाइक की करता धरता मैम है, मोनिका मैम, गंगा सर है जो एलुमनाई सेल को देख रहे हैं, और बोर्ड ऑफ मेंबर जो काफी मतलब जब हमारी शारदा यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई है उस टाइम से अजीत सर, हरी सर, मोनिका मैम, दिस ऑल आर वर्किंग एज अ टीम. तो और इनके अलावा जो स्टूडेंट मेंबर हैं जो मेन एलुमनाई सेल के चैप्टर को इनॉग्रेट कर रहे हैं एवरी कंट्री में, अनुराग एंड उनकी टीम, सो आई विद देयर कोलैबोरेशन जो आज हमारे एलुमनाई है वो हर कंट्री में जा रहे हैं, एंड नॉट ओनली लाइक शहजादी, दे आर सो मेनी लाइक एलुमनाई, दे आर डूइंग, आई जस्ट गिव यू द एग्जाम्पल, ड्यूरिंग कोविड टाइम जब हमारी इंडिया की एम्बेसी ने सभी स्टूडेंट्स को वापस ला रही थी, तब हमारे शारदा के कुछ स्टूडेंट दे आर वर्किंग इन कंट्री लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, वो नर्सिंग सर्विसेज दे रहे थे, दैट टाइम दे डिनाइल कि नहीं वी वांट टू सर्व दिस कंट्री, बिकॉज दैट टाइम जब हमें चाहिए था तो हम यहाँ पर थे, और अब इस कंट्री को जरूरत है, वहां के इवन की वहां के खुद के स्टाफ ने वहां पर लोगों ने छोड़ दिया था, पर इंडियन नर्सिंग्स जो थे वो स्टिल दे आर वर्किंग एंड उन्हें अप्रिशिएट किया गया है।
0: क्या बात है माधवी, वाकई अगर मैं आपको मौका ना देता और अगर आप खुद ये मौका ना लेती तो ये अच्छी बात हम नहीं कह पाते। सो रियली मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से कि आपने बहुत अच्छी बातें हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई, बहुत अच्छा आप लोगों ने हमें समय दिया, और बस शुभकामनाओं के अलावा मुझे लगता है कुछ और बातें होती ही नहीं है। शुभकामनाएं अपने आप में बहुत बड़ी चीजें, अच्छी चीजें, कि दुआएं हर किसी को चाहिए, और दुआएं तभी मिलती हैं जब हम कोई नेक काम कर रहे होते हैं, किसी का दिल जीतना आसान है, बस आप उसके बारे में अच्छा कहिए, अच्छा सोचिए और अच्छा करेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई।
3: सर हमें भी बहुत धन्यवाद।
1: We also become happy to talk to you.
0: Thank you, Shahzadi. So, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, 01204060205 पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम, यूनिटी रेडियो स्टेशन। न टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बाकी बहुत खूबसूरत है, इसे प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारते चले जाइए। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: राम राम दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूं कि आपका दिन शुभमय गुजरे, मंगलमय गुजरे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल भी मत बरतिएगा, क्योंकि जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहाने सारी मुश्किलें आसान है, और इसीलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं ढेर सारी गल्ला शल्ला करने के लिए। सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक मस्ती, कमाल धमाल, जबरदस्त इंफोटेनमेंट होता है,

0: सिर्फ और सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। 15 तारीख है, 9:10 हो चुके हैं और वक्त हाथ से रेत की बाफ में फिसलता चला जा रहा है, इसलिए वक्त पर सारे काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी ही नहीं। और ईश्वर का, खुदा का, पिता परमेश्वर का नाम लेकर घर से बाहर निकलते हैं तो निश्चित तौर पर दिन आपका अच्छा गुजरता है। लेकिन ऑन रोड छोटी छोटी बातों पर हम देखते हैं कि लोग लड़ जाते हैं
1: और घट भी जाते हैं,
0: मतलब जनधन हानि हो जाती है, जो घटना हो गया ना। हाँ, तो आपको समझदारी दिखानी होगी। आप चाहते हैं कि जनधन हानि हो या आप चाहते हैं कि जनधन हानि न हो, इसीलिए बहुत समझदारी से ऑन रोड आगे बढ़िए। हो सकता है कि किसी की गड्डी आपके साथ लग गई या आपकी गड्डी किसी के साथ लग गई, ये सब होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुबह सुबह आप लड़ाई झगड़ा पर उतारू हो जाए और उसके बाद दिक्कतें परेशानी आपके सामने बढ़ जाए। क्या है खास पेट्रोल डीजल के बारे में, सीएनजी के बारे में, घरेलू गैस सिलेंडर के बारे में, वैश्विक स्तर पर जो आपाधापी है उसका फर्क हिंदुस्तान पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में जानेंगे जरूर। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर सुरु शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। तकदीर, ब्यूटीफुल ट्रैक, सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर।

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
5: शारदा। हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो

0: तो है तूफान मेल, क्लास में सबसे आगे, खेल में रहती नंबर वन, दिमाग भी सरपट भागे। और एक है थकान मेल, थकी रहती हर दम, खेल में रहती पीछे वो, पढ़ाई में भी नंबर कम।
1: कहीं थकान मेल को अनीमिया तो नहीं? अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
0: जब से ली थकान मेल ने नियम से आयरन की गोली, चुस्ती फुर्ती आई उसमें तूफान मेल वो भी होली।
2: आओ बनाए अनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।
4: भारतीय संस्कृति की एक बहुत अच्छी बात है, सनातन धर्म में कहा जाता है, भारतीय कल्चर में कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इसी सोच के साथ जब हम आगे बढ़ रहे होते हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, बेहतर हो रहा होता है। लेकिन जब हम लोगों को देखते हैं कि अरे मेरे घर के आसपास थोड़ी बम गिरा है, मेरे पड़ोसी देश के ऊपर थोड़ी बम गिरा है, या मेरे देश में थोड़ी बम गिरा है, लड़ाई तो मिडिल ईस्ट में हो रही है, हमें उसका क्या, हमारे देश पर कोई थोड़ी फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात को भली भांति समझता हूं और ये जो लाइनें हैं जो मैंने अभी आपसे कही कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, ये जब कामना होती है तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा। लेकिन जब कहीं बाहर युद्ध हो रहा होता है तो उसका फर्क किसी कोने में किसी आम जन पर पड़ता हुआ नजर आता है। जैसे पेट्रोल डीजल की बातें हो रही हैं, सीएनजी पीएनजी की बातें हो रही हैं, सिलेंडर गैस की बातें हो रही हैं, लेकिन ऐसे समय में अफवाहें भी कहीं ना कहीं जन्म ले लेती हैं। एक खबर को जब हम पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि इसके बारे में हम बात कर सकते हैं। महंगाई का ट्रिपल अटैक होता हुआ नजर आ रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं और सीएनजी भी महंगी हो गई है। पेट्रोल डीजल के बाद अब दिल्ली में सीएनजी भी महंगा हो गया और पेट्रोल डीजल की कीमतों में 3-3 रुपए की बढ़ोतरी हुई है और वहीं सीएनजी के दाम 2 रुपए प्रति किलो बढ़ गए हैं। तो कौन कहता है कि असर नहीं होता? असर होता है दोस्त, बहुत दूर तक असर होता है और इसका फर्क पड़ता नजर आता है महंगाई पर, आमजन पर, हम सब पर पड़ता हुआ नजर आता है फर्क। एक बात यह भी कहूंगा कि अफवाहों से दूर रखिएगा, अफवाहें न फैलाइए, न अफवाहों को जन्म दीजिए। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और हमारा फर्ज बनता है कि विषम परिस्थिति में देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ। क्या बात है, ब्यूटीफुल ट्रैक ऑल योर सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। रेशम का रूमाल

0: हर सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ, और हमेशा ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो काया है, हमारी जो काया है, वो निरोगी काया रहे। क्योंकि सच बात तो ये कि जब आप हेल्दी रहेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी काम को खूबसूरती के साथ आप अंजाम तक पहुंचा पाएंगे। हाँ, नहीं वरना खुद ही अंजाम बन जाएंगे। बहादुर ने बहुत सही बात, कटु सत्य वचन बोल दिया। चलिए, हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ते रहिए। जिंदगी में दिक्कतें परेशानियां आएंगी, चली जाएंगी, लेकिन हमेशा तोल मोल कर बोलना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं गगन बेटा, शाबाश। और क्या खबर लायो कालिया? नहीं, मेरा नाम गगन है। अच्छा गगन, क्या खबर लायो? एक कोट को मैं पढ़ रहा था। कोट पढ़ने की जगह, कोट पहनने की जगह और कोट में जाने की जगह, मतलब मैं एक वाक्य को पढ़ रहा था, एक संदेश को पढ़ रहा था। अच्छा, ऐसे आ रहे हो, शाबाश, बताओ। कोट ऑफ द डे, विक्टर फ्रैंकल। वो कहते हैं कि कामयाबी का अजीब सच है, जितना इसके पीछे भागोगे उतना ही ये दूर चली जाएगी। बड़े बड़े विद्वानों ने अपने अपने तरीके से बातें सामने रखी हैं। हमारा कल्चर कहता है कि कर्म करते चले जाइए, फल की चिंता मत करिए, और मुझे लगता है कि उसी के आधार पर, उसी के आसपास की ये बात है। और जब आप निष्काम कर्म करेंगे, फल की चिंता नहीं करेंगे, तो रिजल्ट देखिए खुद ब खुद वो आपके सामने आता चला जाएगा। कोशिश करते जाइए। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं हुआ करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं हुआ करती। ग्रूट ठोको, गगन को मत ठोकना। ताली ताली की बात हो रही। अच्छा ऐसे आ रहे हो, और क्या बात है बेटा? बस मेहनत करते जाओ, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती।
2: रॉमी, अरुण एंड इका, रिक्रिएटेड तनिष्क बागची, लिरिक्स शब्बीर अहमद, ओनली ऑन टिप्स ऑफिशियल। सो लेट्स एंजॉय इट, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: शम्मा जम्मा, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 FM पर। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम। 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। लर्निंग कोडिंग, AI, साइबर सिक्योरिटी, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए। वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:38 हो चुके हैं, 15 तारीख है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। फिलहाल गूगल देवता क्या कह रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ना कि कहीं कोई जानकारी नहीं है तो गूगल देवता से पूछो, गूगल भगवान से पूछो, वो झट से फट से इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ ही जाती है। लेकिन 15 GB के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ, यानी कि 15 GB स्टोरेज नहीं बल्कि 5 GB स्टोरेज अब आपको मिलनी शुरू होगी, क्योंकि 15 GB स्टोरेज के लिए यूजर्स को अपने फोन नंबर को वेरीफाइड करना होगा। तो कुछ कुछ नई पॉलिसीज आ रही हैं, तो उसके बारे में अगर आप गूगल करेंगे, गूगल की इन्फॉर्मेशन के लिए गूगल करेंगे, तो मैं समझता हूं कि बहुत सारी डिटेल आपके सामने आ जाएंगी। वक्त बदल रहा है, सोच बदल रही है, हालात बदल रहे हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हिम्मत से समझदारी से काम लेते हुए आप आगे बढ़ते चले जाइए। कहते हैं कि हिम्मत मरदा तो मदद खुदा। समझदारी से काम लीजिएगा जब आंधी तूफान बारिश में कहीं ना कहीं आप घिर जाएं, क्योंकि आंकड़े उत्तर प्रदेश में मौत के बहुत ज्यादा हमारे सामने आए हैं। 115 करीब लोगों की मृत्यु तक हुई है। बस इस बात से हमें ये सीख लेनी है कि आंधी बारिश तूफान में सुरक्षित स्थान की तरफ चले जाएं, ताकि जनधन हानि कम से कम हो या ना हो, इस बात का हम ख्याल रखें, लापरवाही न बरतें। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है, समझदारी से आप आगे बढ़िए, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

0: अरे नृत्य आपका बच्चा करता है, उसके बाद माँ बाप अर्थात मम्मी पापा नृत्य करते हैं जब बच्चे से मोबाइल खींच लिया जाता है। गुड मॉर्निंग सुप्रभात।
1: बिल्कुल सही बात है, सही बात कही है हमारे बहादुर ने। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। 9:46 हो चुके, 15 तारीख है। हमारे आसपास के खास उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। चलिए हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चे नाजुक होते हैं, नासमझ होते हैं, लेकिन आप और हम तो समझदार हैं ना। अक्सर हमने लोगों को देखा है कि जैसे बच्चा आपका रोना शुरू कर देता है, उसको आप मोबाइल की लत लगा देते हैं और वो लत छुड़ाने के लिए बड़ी दिक्कतें परेशानियों से आप गुजर रहे होते हैं। बच्चे की नींद उड़ जाती है, बच्चा मोटापे का शिकार हो सकता है, बच्चे को और भी बीमारियां घेर सकती हैं, बच्चा अवसाद ग्रसित हो सकता है अगर आप उसको मोबाइल टाइम, स्क्रीन शेयर टाइम ज्यादा दे रहे हैं। एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर जो एज है उस दायरे में आप इतने मिनट स्क्रीन टाइम जो मोबाइल है वो आप देख सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्सेस करेंगे तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारा यही है कि अपने बचपन को हम ना छीने, है ना। अगर बच्चा आपका खेलना चाहता है, जो कि मैं करता हूँ, जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ जाता हूँ, बच्चों के बीच में जाता हूँ कि पापा पापा बॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो मैं समझता हूँ उसकी फीलिंग्स की, मैं कद्र करता हूँ, मैं सारे काम को छोड़कर बच्चों के साथ टाइम शेयर करता हूँ, टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ, वो क्वालिटी टाइम, जो क्वालिटी टाइम जिसे हम कहते हैं ना, वो स्पेंड हम कर रहे होते हैं। सो प्लीज़ प्लीज़ ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते अपने बच्चों से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, उनका ख्याल रखिए, मोबाइल की लत से उनको दूर रखिए, उनके साथ समय बिताइए ताकि वो किसी बीमारी से ग्रसित ना हो। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। गुड मॉर्निंग। तेरा बस मुझे जीने ना दे, ब्यूटीफुल ट्रैक आस्था गिल की आवाज में, ओनली ऑन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ।

मेरा दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है। बोली में थोड़ा रियान इन टच है। जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा थी तेरी ना।

Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में नौ उसका 52 मिनट हो चुके हैं। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बहुत सारी बातें आपको बताई कि वर्तमान समय में गर्मी के मौसम में आप अपनी सेहत का ख्याल कैसे रख सकते हैं। कुछ ऐसी विशेष बातें सेहत सही लाभ कई के जरिए सुबह हर रोज 10 बजे एक विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए प्रचारित कर रहे होते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये विशेष कार्यक्रम हर रोज जरूर सुनिए, क्योंकि सच कहते हैं कि जो कहते हैं कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। और इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं। पानी भरपूर पीजिएगा और जिसमें पानी की मात्रा प्रचुर हो अर्थात ज्यादा हो वो वाले फल आप खा सकते हैं, तरबूज खा सकते हैं, खरबूज खा सकते हैं, खीरा आप खाइए और पानी भरपूर पीजिएगा। शिकंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, इसके अलावा
1: मैं बताऊं,
0: हाँ इसके अलावा
1: समोसे मत खाना, सिलेंडर महंगा हो गया। या, या, या, या।
0: हाँ, CNG पे थोड़े दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए बढ़े हैं, CNG पे 2 रुपए बढ़े हैं। जब महंगाई बढ़ रही है मतलब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो उसका फर्क आम जन पर देखने को हमें मिलेगा। लेकिन हिंदुस्तान की खूबसूरती यह है कि कहा जाता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। यही हम परवरदिगार से कामना करते हैं कि चैन अमन हो, सुकून हो चारों ओर, ताकि कोई दिक्कत परेशानी किसी और ना हो। धुरंधर फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक पार्ट 2 का ओए ओए गाने पे मतलब पंगा हो गया। पंगा ये हुआ कि राइट्स का पंगा हुआ है और इसीलिए कहा जाता है कि राइट्स आपको खरीदने चाहिए, राइट्स के मामले में पूछताछ कर लेनी चाहिए। जैसे ही आपको परमिशन मिले तभी आप किसी के राइट्स ले सकते हैं, अदरवाइज दिक्कतें बढ़ सकती है। ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूं अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।

0: Sharda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका वही मन पसंद कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और आज के कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई का विषय थोड़ा अलग है। सच कहूं तो मुझे खुद थोड़ा झिझक भी हो रही है इस बारे में बात करने में, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नवजात शिशुओं की देखभाल के एक ऐसे तरीके पर जो सुनने में बहुत ही सरल लगता है लेकिन असल में जीवन बचाने की ताकत रखता है। और इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ हैं हमारे अपने सेहतिया भैया, जो हमेशा हमें स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी बातें आसान भाषा में समझाते हैं। तो सबसे पहले सेहतिया भैया, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद कपूर साहब, यानी कि शशि कपूर, और सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। भाई, आशा करता हूँ कि आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि हम सब की जो काया है वो निरोगी काया रहे। और साथ ही साथ इस धन्यवाद प्रस्तुति के बाद अपने सारे प्यार और भरोसे के लिए आज तो आपने शुरुआत ही इतनी भावुक कर दी कपूर साहब कि लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है। भाई,
0: बात तो सच में बहुत बड़ी लग रही है सेहतिया भैया, लेकिन मैं थोड़ा कंफ्यूज भी हूँ। ये कंगारू मदर केयर आखिर क्या है? नाम सुनते ही मेरे दिमाग में तो बस वही जानवर वाला कंगारू आ जाता है जो अपने बच्चे को पेट के थैले में रखता है। तो क्या इसका मतलब कुछ वैसा ही है या मैं पूरी तरह गलत सोच रहा हूँ?
1: भाई शशि कपूर साहब, कहीं कहीं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पहुंच चुके हैं। मुझे एक बात समझ में आती है कि हम जब आसपास चीजों के रहते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ हमें समझ में आ ही जाता है, और वैसे ही इस विषय से आपने कुछ पकड़ भी लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप पूरी तरह गलत भी नहीं है, जो मैं कह रहा था वही, और पूरी तरह सही भी नहीं। अब कैसे सही नहीं, इसके बारे में बात करते हैं। नाम जरूर कंगारू से लिया गया है दोस्तों, लेकिन ये तरीका इंसानों के नवजात बच्चों के लिए है और बहुत ही खास और जीवन बचाने वाला तरीका है। इसमें भी एक तरह से माँ

0: दुनिया छोड़ देते हैं। सोचिए, अभी जिंदगी ठीक से शुरू भी नहीं हुई होती और खत्म हो जाती है। ये आंकड़ा दोस्तों हमें बताता है कि नवजात बच्चों की देखभाल कितनी जरूरी है।
1: ये तो सच में बहुत ही डराने वाला आंकड़ा है भैया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चे इतनी जल्दी अपनी जान गंवा देते हैं।
0: मैं कहूंगा जी हाँ, और इसका एक बड़ा कारण ये है कि बहुत से बच्चे या तो समय से पहले पैदा होते हैं, यानी 9 महीने पूरे होने से पहले, या फिर उनका जन्म के समय वजन बहुत कम होता है। ऐसे बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उन्हें ज्यादा देखभाल, गर्मी, पोषण और सुरक्षा की जरूरत होती है, जो हर जगह आसानी से उपलब्ध नहीं होती।
1: तो क्या सियतिया भैया, ऐसे बच्चों के लिए अस्पताल में कोई खास इंतजाम होता है? जैसे मैंने फिल्मों में देखा है, वो कांच का डिब्बा जिसमें बच्चे को रखा जाता है, वो क्या होता है?
0: उसे इनक्यूबेटर कहते हैं दोस्तों। ये एक मशीन होती है जो बच्चे को जरूरी गर्मी और सुरक्षित माहौल देती है, लेकिन समस्या ये है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होती, खासकर हमारे गांवों और दूर दराज इलाकों में। और जहाँ उपलब्ध होती भी है, वहाँ हर जरूरतमंद बच्चे तक पहुँच पाना मुश्किल हो जाता है।
1: तो फिर ऐसे बच्चों का क्या होता है भैया, अगर मशीन भी नहीं है और बच्चे को खास देखभाल चाहिए तो परिवार क्या करे?
0: यहीं पर कंगारू मदर केयर उम्मीद की किरण बनकर सामने आती है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ माँ का स्पर्श, उसका प्यार और उसका समय लगता है। माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा कर रखती है, जिससे बच्चे को गर्मी मिलती है, उसकी सांसें स्थिर रहती हैं और उसे वही सुरक्षा महसूस होती है जो उसे माँ के गर्भ में मिलती थी। और यही साधारण सा तरीका कई बार बच्चे की जान बचा सकता है।
1: सिर्फ माँ के स्पर्श से? ये बात सुनने में तो बहुत ही अद्भुत लग रही है सियतिया भैया, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में अभी भी ये सवाल उठ रहा है कि ये आखिर संभव कैसे है? क्या सच में सिर्फ पास रखने से ही बच्चे की हालत बेहतर हो सकती है?
0: देखिए, यही तो कंगारू मदर केयर की खासियत है। इसका मतलब है कि बच्चे को माँ के सीने से सीधे लगाकर रखा जाए, जिसे हम स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट कहते हैं। जैसे कंगारू अपने छोटे से बच्चे को अपने थैले में सुरक्षित रखता है, वैसे ही माँ अपने नवजात को अपने शरीर से लगाकर रखती है। इस दौरान बच्चे को न केवल गर्मी मिलती है, बल्कि उसे एक तरह की सुरक्षा और सुकून भी महसूस होता है, जो उसके विकास के लिए बेहद जरूरी है।
1: तो क्या इसका मतलब ये है कि बस बच्चे को गोद में ले लिया जाए, वही काफी है?
0: नहीं, सिर्फ गोद में लेना काफी नहीं है। इसमें खास बात यह है कि बच्चे को सीधे शरीर से लगाकर रखा जाता है, ताकि उसका पूरा शरीर माँ की त्वचा के संपर्क में रहे। इससे बच्चे को लगातार गर्मी मिलती है, उसकी सांसें संतुलित रहती हैं और वो खुद को सुरक्षित महसूस करता है। ये एक तरह से बच्चे को वही माहौल देने जैसा है जैसा उसे माँ के गर्भ में मिलता था।
1: सियतिया भैया, आपकी जो बातें हैं सुनने में तो बहुत ही आसान लग रही हैं, जैसे कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या ये तरीका सच में इतना असरदार है?
0: बिल्कुल असरदार है। कई शोधों में ये साबित हुआ है कि जिन बच्चों को कंगारू मदर केयर दी गई, उनकी मृत्यु दर कम रही, उनका वजन तेजी से बढ़ा और वे ज्यादा स्वस्थ पाए गए। यहाँ तक कि लंबे समय में भी ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर देखा गया है।
1: आपके कहने का मतलब एक माँ का साधारण सा स्पर्श एक बच्चे की जिंदगी बचा सकता है, ये सोचकर ही मन भर आता है।
0: बिल्कुल, और यही इस साल का संदेश भी है, स्टिलनेस इज स्ट्रेंथ, यानी जब माँ शांत होकर अपने बच्चे को अपने पास रखती है, उसे समय देती है, तो वही सादगी और स्थिरता बच्चे की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।
1: वाह सियतिया भैया वाह, ये बात तो आपकी दिल को छू गई। सच में कभी कभी सबसे सरल चीजें ही सबसे ज्यादा ताकतवर होती हैं। और अब सियतिया जी, एक जरूरी सवाल, क्या ये तरीका घर पर भी अपनाया जा सकता है या सिर्फ अस्पताल में ही किया जाता है?
0: जी हाँ, इसे घर पर भी किया जा सकता है। शुरुआत अस्पताल में डॉक्टर या नर्स की सलाह से होती है, लेकिन जब माँ और बच्चा घर लौटते हैं तो वहाँ भी इसे जारी रखा जा सकता है, बशर्ते सही तरीके से किया जाए और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह ली जाए।
1: तो फिर इसे सही तरीके से करने का क्या तरीका है, थोड़ा विस्तार से बताइए ताकि हमारे श्रोता भी आसानी से समझ सके।
0: इसमें बच्चे को माँ के सीने पर सीधा रखा जाता है, उसका सिर हल्का सा एक तरफ मुड़ा होता है ताकि सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो। बच्चे को इस तरह रखा जाता है कि उसका शरीर सुरक्षित रहे और उसे

0: कपड़े या दुपट्टे की मदद से अच्छे से बांध दिया जाता है ताकि वो हिले डुले नहीं और आराम से टिका रहे।
1: और इस दौरान बच्चे को खाना कैसे दिया जाता है?
0: इस दौरान सबसे जरूरी है कि बच्चे को केवल माँ का दूध दिया जाए। माँ का दूध ही उसके लिए सबसे अच्छा पोषण है, जो उसे ताकत देता है, बीमारियों से बचाता है और उसके विकास में मदद करता है।
1: तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तरीका सिर्फ बच्चों को गर्म रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उसे जरूरी पोषण भी देता है। यानी एक ही तरीके से बच्चे की कई जरूरतें पूरी हो जाती हैं, जो सच में काफी खास बात है।
0: आपने बिल्कुल सही समझा, यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है कि बिना किसी महंगे उपकरण के सिर्फ माँ के स्पर्श और दूध से बच्चे को सुरक्षा, पोषण और सुकून तीनों मिल जाते हैं।
1: सिहतिया भैया, अब तो मेरा मन और जानने को हो रहा है। आप जरा विस्तार से बताइए कि इसके फायदे क्या क्या हैं, ताकि हमारे श्रोता भी इसे अच्छे से समझ सके।
0: जब कंगारू मदर केयर सही तरीके से दी जाती है तो बच्चे का शरीर का तापमान संतुलित रहता है, जिससे उसे ठंड लगने का खतरा कम हो जाता है। उसकी सांसें भी ज्यादा स्थिर और बेहतर हो जाती हैं। ऐसे बच्चे आम तौर पर ज्यादा समय तक आराम से सोते हैं, कम रोते हैं और उनका वजन भी सामान्य से तेजी से बढ़ता है। कुल मिलाकर उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर तरीके से होता है।
1: ये तो बच्चे के लिए बहुत ही फायदेमंद है, लेकिन क्या इसका असर माँ पर भी पड़ता है?
0: जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। सही सवाल आपने किया। जब माँ अपने बच्चे को इस तरह से अपने पास रखती है तो उसका दूध भी बेहतर तरीके से बनने लगता है। साथ ही माँ और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बनता है, जो आगे चलकर बच्चे के विकास में बहुत मदद करता है। माँ का आत्मविश्वास भी बढ़ता है कि वो अपने बच्चे की अच्छी देखभाल कर पा रही है।
1: वाह सिहतिया भैया वाह, ये तो सच में माँ का जादू ही हुआ। इतनी साधारण सी चीज, लेकिन असर इतना गहरा। सिहतिया भैया, अब एक और बात मेरे मन में आ रही है। हम बार बार माँ की बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही भी है, लेकिन क्या इसमें पिता की भी कोई भूमिका होती है, या ये पूरी जिम्मेदारी सिर्फ माँ की ही होती है?
0: बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अक्सर हम यही सोचते हैं कि नवजात की देखभाल सिर्फ माँ का काम है, लेकिन दोस्तों सच तो ये है कि पिता की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। कंगारू केयर सिर्फ मदर केयर तक सीमित नहीं है, कई बार इसे कंगारू पेरेंट केयर भी कहा जाता है, क्योंकि अगर माँ किसी कारण से उपलब्ध न हो या थकी हुई हो तो पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर यही केयर दे सकते हैं।
1: मतलब पिता भी बच्चे को अपने सीने से लगाकर वही फायदा दे सकता है जो माँ देती है?
0: बिल्कुल, पिता का शरीर भी बच्चे को गर्मी देता है, उसकी सांसों को स्थिर करने में मदद करता है और बच्चे को सुरक्षा का एहसास कराता है। इसके अलावा जब पिता इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो उनका बच्चे के साथ भावनात्मक जुड़ाव भी बहुत मजबूत होता है।
1: सीता भैया, ये तो बहुत ही खूबसूरत बात है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि पिता थोड़ा दूर रहते हैं या समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या करना चाहिए।
0: बिल्कुल, और यही सोच बदलने की जरूरत है। जब पिता इस तरह से बच्चे के करीब आते हैं तो न सिर्फ बच्चे को फायदा होता है, बल्कि पिता का आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि वे भी अपने बच्चे की देखभाल में बराबर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। इससे पूरे परिवार का माहौल सकारात्मक होता है और माँ को भी आराम और सहयोग मिलता है।
1: तो साथियों, ये बात बहुत जरूरी है कि हम नवजात की देखभाल को सिर्फ माँ तक सीमित ना रखें। अगर पिता भी इसमें शामिल होते हैं तो बच्चे को दोगुना प्यार और देखभाल मिलती है। लेकिन सिहतिया जी, हर चीज के साथ कुछ सावधानियां भी जरूरी होती हैं। क्या कंगारू मदर केयर करते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है?
0: बिल्कुल, कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी कंगारू केयर दी जाए उस समय मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें ताकि ध्यान पूरी तरह बच्चे पर रहे। धूम्रपान बिल्कुल नहीं करना चाहिए और कोई तेज खुशबू या परफ्यूम भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे बच्चे को परेशानी हो सकती है। दोस्तों, साथ ही जिस जगह बच्चे को रखा जा रहा है, यानी छाती का हिस्सा, वो साफ और स्वच्छ होना चाहिए।
1: और इसे कितनी देर तक करना चाहिए? क्या कोई तय समय होता है?
0: कम से कम 1 घंटे तक तो इसे लगातार करना ही चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा समय दिया जा सके उतना बेहतर होता है। कई मामलों में परिवार दिन में कई घंटों तक भी इसे जारी रखते हैं, जिससे बच्चे को लगातार फायदा मिलता है।
1: सिहतिया भैया, आज की बातचीत ने सच में मेरी सोच बदल दी। शुरुआत में मैं थोड़ा झिझक रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि ये विषय कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए।
0: यही तो हमारा मकसद है, जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना, ताकि हर परिवार अपने बच्चों की बेहतर देखभाल कर सके और कोई भी बच्चा सिर्फ जानकारी के अभाव में अपनी जिंदगी न खोए।
1: तो साथियों, अगर आपके घर में कोई बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है या उसका वजन कम है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कंगारू मदर केयर अपनाइए और अपने नजदीकी डॉक्टर या आशा कार्यकर्ता से सही जानकारी जरूर लें। याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत किसी महंगी मशीन में नहीं बल्कि माँ के प्यार और उसके स्पर्श में होती है, क्योंकि कई बार सबसे बड़ी ताकत शांति, धैर्य और अपनापन ही होता है।

0: आज हमारे साथ डॉक्टर मनोज पाल मौजूद हैं, जो कि द फेडरेशन ऑफ ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पाल एक मेडिकल डॉक्टर और पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और वो हमारे साथ कंगारू मदर केयर पर कुछ बातचीत करेंगे। थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: सर। हमारा और हमारे समुदाय का पहला सवाल ये रहेगा कि कंगारू मदर केयर आखिर है क्या और इसे भारत के जननी सुरक्षा कार्यक्रम में कैसे जोड़ा गया है।
1: आप जानेंगे कि जैसे हमारे यहाँ बहुत से बच्चे समय से पूर्व यानी प्री टर्म पैदा होते हैं या उनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम होता है, जिसको हम लो बर्थ वेट कहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कंगारू मदर केयर एक तरीका है जिसके द्वारा बहुत सारा इन्फेक्शन या बच्चों में होने वाले तापमान की कमी हाइपोथर्मिया से बचा जा सकता है। ये बहुत ही लो कॉस्ट, जिसमें कोई कॉस्ट नहीं लगती है, एक तरीका है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा मान्यता प्राप्त है और भारत सरकार भी इसे अपने कार्यक्रम में लगभग 2014 से शामिल कर चुकी है, जिसकी गाइडलाइंस भारत सरकार द्वारा पहले दी जा चुकी
0: है। सर दूसरा सवाल ये है कि माँ की छाती से नवजात को चिपकाकर रखने के क्या फायदे हो सकते हैं और ये नवजात मृत्यु को कैसे कम करता है।
1: तो माँ की छाती से नवजात को चिपकाना के बहुत सारे फायदे हैं। अमूमन जब भी बच्चा पैदा होता है तब भी बच्चे को माँ की छाती पे रखा जाता है, अगर वो स्वस्थ होता है तब भी, यानी अगर बच्चा लो बर्थ वेट नहीं है, बच्चा प्रीटर्म नहीं है, तब भी उसे माँ की छाती से चिपकाने के बहुत लाभ होते हैं। लेकिन ऐसे बच्चों में जहाँ वजन कम हो या वो समय से पूर्व पैदा किए हो, यहाँ ये बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे बच्चे हाइपोथर्मिया से यानी उनका जो शरीर का तापमान है वो गिर जाता है, इस चीज का बहुत संभावना ऐसे बच्चों में रहती है, जिसके लिए ये जरूरी है कि वो माँ के स्तन के पास जो है वो चिपके रहे। इससे माँ का टेम्परेचर और बच्चे का टेम्परेचर बराबर रहता है, तो बच्चे में हाइपोथर्मिया नहीं। दूसरा, इससे इन्फेक्शन होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। माँ के शरीर पर जो विषाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, वही बच्चे में जाते हैं और वो बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए बहुत कारगर होते हैं। तीसरा, इससे माँ के साथ बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि वो माँ के साथ चिपका रहता है तो वो माँ को ही देखता है, माँ को ही सुनता है, माँ का ही दूध पीता है, तो इस वजह से बच्चे और माँ की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि माँ का दूध जो है वो बच्चे को ज्यादा मिल पाता है, अमूमन ये देखा गया है और हम सभी जानते हैं कि सरकार ने बहुत कोशिश जरूर की है, लेकिन अभी भी ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी शुरुआत में ही होना तथा पूरे कार्यकाल तक यानी 6 महीने तक होना ये संभव नहीं हो पाया है। तो शुरुआती तौर पे ब्रेस्ट फीडिंग करने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत फायदा होता है। इसके अलावा अगर लॉन्ग टर्म देखें तो ऐसे माँ और बच्चे जब साथ साथ रहते हैं कंगारू मदर केयर में, तो बच्चे के न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज जो होते हैं वो कम होते हैं। आगे जाके बच्चे में ऐसे भी स्टडीज हैं जो कहती हैं कि आगे जाके बच्चे में ओबेसिटी, मोटापा और डायबिटीज जैसी बीमारियां कम होती हैं, तो ये सभी के लिए फायदेमंद चीज है।
0: सर जैसे आपने बताया कि प्रीटर्म बच्चे के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंगारू मदर केयर, तो इसे स्पेशल न्यूबॉर्न SNCU यानी स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट और आशा आंगनवाड़ी सेवाओं से कैसे जुड़ता है, मतलब जोड़ा गया है।
1: जी, तो प्रीटर्म बच्चों को कई बार इंक्यूबेटर की जरूरत महसूस होती है, ये वहाँ के डॉक्टर निर्धारित करेंगे कि उसको इंक्यूबेटर में रखा जाए या माँ की छाती से चिपकाया जाए। अगर मान लीजिए बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है तो उसको कंगारू मदर केयर नहीं दिया जा सकता, लेकिन जहाँ पर SNCUs हैं, जहाँ बच्चा स्टेबल है, उसका सांस ले पा रहा है, वैसे दिल की धड़कन सही चल रही है लेकिन प्रीटर्म है, ऐसे बच्चों को अगर SNCU के साथ कंगारू मदर केयर की सुविधा प्राप्त हो जाए तो ये बच्चों के मोर्टेलिटी को बहुत कम कर सकती है। तो इसलिए सरकार ने भी अभी ये मुहिम शुरू की है कि SNCUs के आजू बाजू जहाँ तक संभव हो पाए वहाँ पर कंगारू मदर केयर के वार्ड्स बनाए जाएं, जहाँ महिलाओं को एक प्राइवेसी मिले कि वो अपने बच्चे को छाती से लगा पाए और उनको इस तरह का प्रशिक्षण दिया जा सके कि कैसे कंगारू मदर केयर करना है। तो ये अभी मुहिम चल रही है और जहाँ नए अस्पताल बनेंगे वहाँ पर ये SNCU के साथ साथ ही हो।
0: सर आपने बताया कि शिशु का वजन और स्वास्थ्य तो कैसे सुधरता है कंगारू मदर केयर से, अगर इसे पोषण अभियान से कैसे जोड़ा गया है।
1: देखिए, जहाँ लो बर्थ वेट बच्चे की बात होती है तो वहाँ पर ये संभावना हमेशा रहेगी कि जैसे ही वो अपने न्यूबॉर्न पीरियड से 28 डेज के पीरियड से बाहर निकलेंगे तब भी वो कुपोषित रहेंगे अगर उन्हें सही पोषण नहीं दिया गया, और कुपोषण की संभावना उनके लाइफ लॉन्ग रहेगी, अगर उनके शुरुआती तौर पर उनको सही पोषण ना दिया जाए। तो कंगारू मदर केयर में शुरुआती तौर पे गाइडलाइंस में बताया गया कि शुरुआती तौर पे कैसे बच्चों को पोषण दिया जाए, यानी माँ का दूध ही दिया जाए, और अगर संभव नहीं है तो फिर माँ का एक्सप्रेस मिल्क दिया जाए, अगर वो भी संभव ना हो तभी फॉर्मूला फीड पे जाया जाए। लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े होंगे तो उनका पोषण नियमित रहे।
0: सर, क्या कंगारू मदर केयर सिर्फ माँ दे सकती है या पिता या अन्य परिवार जन भी किसी भी तरीके से मतलब दे सकते हैं?
1: तो कंगारू मदर केयर कोई भी दे सकता है। माँ के साथ इसको इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग का है, क्योंकि माँ दूध पिला सकती है, तो माँ को तो करना ही करना है। लेकिन ये प्रैक्टिकल ये संभव नहीं हो पाता कि सारे टाइम सिर्फ माँ ही बच्चे को लेके, मतलब माँ ही बच्चे को चिपका के रखे। तो इसके लिए जरूरी है कि परिवार के दूसरे लोग हैं वो भी कंगारू मदर केयर कैसे देना है इसके बारे में जानकारी रखें और दें। एक चीज जो इसमें गौर करने लायक है कि प्रीटर्म बच्चों को ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग हैंडल करें, ये ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए परिवार के लोग दो या तीन, जैसे कि सासू माँ हो गई या माँ हो गई और पिता हो गए, वो अगर इसको करेंगे तो उसके कई बेनिफिट्स हैं, क्योंकि ये होगा फिर प्रैक्टिकली होगा। हम कहते हैं कि मदर के साथ कई बार एक्सटेंडेड कंगारू मदर केयर 8 से 12 घंटे करना पड़ता है, तो प्रैक्टिकली कई बार माँ के साथ ये पॉसिबल नहीं। तो अगर इसमें पिता को शामिल किया जाए तो उसके दो फायदे होंगे, एक तो कंगारू मदर केयर हो पाएगा, दूसरा बॉन्डिंग की जहां बात करता है, अगर मदर के साथ टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होती है तो फादर के साथ भी टच होने पर बच्चे की बॉन्डिंग होगी, और ये दो तरफा होगा, बच्चे की भी होगी और फादर की भी होगी। तो ये जरूरी है कि इसमें परिवार के जनों को जोड़ा जाए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए।
0: और अगर मदर कंगारू मदर केयर करें तो क्या वो 12 घंटे तक ही करना होता है, मतलब क्या समय, कितने समय तक करना चाहिए इसको?
1: मैं कहूँ ये डिपेंड करता है कि 12 घंटे तो कंटिन्यूअस होगा कि अगर बच्चा मान लीजिए बहुत प्रीटर्म है लेकिन हीमोडायनेमिक स्टेबल है, 32 वीक से कम का है, और उसकी कंडीशन क्या है, 4 से लेकर 12 घंटे तक कहीं भी हो सकता है, शॉर्ट पीरियड होता है, एक्सटेंडेड होता है, तो कहीं तक बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा वो कि कितनी देर करना है। लेकिन अगर बच्चे को मान लीजिए एक्सटेंडेड भी करना है तो जब परिवार होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सिर्फ माँ के ऊपर नहीं रहा, माँ बाप और सासू माँ, ध्यान रखना पड़ता है उसमें कई बार, क्योंकि अगर आप एक से ज्यादा केयर गिवर के पास जा रहे हो तो ऐसा ना हो कि अगर केयर गिवर साफ सुथरे नहीं है, अगर वो नहा के नहीं आए हैं या कपड़े वैसे हैं, तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि यहाँ केयर गिवर हो और वो इस बात को समझे, इसीलिए शायद फैमिली काउंसलिंग कंगारू मदर केयर में बहुत इम्पोर्टेंट है। जहां तक बात आशा की है, डिस्चार्ज होने के बाद कंगारू मदर केयर कंटिन्यू रहना चाहिए, आशा की विजिट होती है, तो उस विजिट में अगर आशा उनको काउंसिल नहीं कर पाएगी या उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगी, फॉलो अप नहीं कर पाएगी, तो कंगारू मदर केयर कम्युनिटी में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो आशा आंगनवाड़ी को सही ट्रेनिंग देना और उनके फॉलो अप में शामिल करना दो कारगर तरीके होंगे जिससे कंगारू मदर केयर को कम्युनिटी में भी करा जा सकता है।

0: ग्रामीण इलाकों में इसे अपनाने में क्या दिक्कतें आती हैं, जैसे CHC, PHC, इनका क्या हल निकाल सकते हैं?
1: देखिए, कई बार दिक्कतें कम्युनिटी में किस तरह की सोच है और किस तरह के वहाँ पर वैल्यूज हैं उस पे बहुत डिपेंड करता है। अभी भी हमारे यहाँ कई कम्युनिटीज में, कई ग्रामीण इलाकों में ऐसा होता है कि वो अभी भी मदर और चाइल्ड को सेपरेट रखने की कोशिश की जाती है, कि एक बार दूध पिला दिया और बच्चे का डायपर चेंज हो गया तो उसको सेपरेट करने की कोशिश की जाती है। प्री टर्म लो बर्थ वेट में ये खतरनाक हो सकता है, लेकिन उनको समझाना ये चीज कि ये क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, आज की डेट में बहुत जरूरी है। दूसरा, एक हमारे यहाँ कभी भी, अगर हम थोड़ा सा जेंडर रोल्स की बात करें, तो कभी भी फादर को बहुत टच नहीं करने देते हैं, खासकर प्री टर्म बच्चा या जब बच्चा छोटा होता है, लो बर्थ वेट होता है, तो लोगों को बहुत डर होता है कि हम इसको पकड़ेंगे कैसे। बच्चे की गर्दन के नीचे हाथ रखना होता है या बच्चे को स्ट्रेट पकड़ना होता है, तो वो डर जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन से या जब आशा या आंगनबाड़ी उनको बताएगी तभी निकाला जा सकता है, और उनको इन्वॉल्व करने से। यानी कि अगर हम KMC की काउंसलिंग कर रहे हैं सिर्फ मदर की करेंगे या सिर्फ मदर और मदर इन लॉ की करेंगे, सासू माँ की करेंगे, तो शायद वो वहीं तक रह जाएगा, वो ज्ञान जो है वहीं तक रह जाएगा। तो जरूरी है कि खासकर फादर को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, उनको सिखाया जाए। ऐसा नहीं है कि फादर पकड़ना नहीं चाहते, लेकिन डर, उस डर को कैसे निकाल सकते।
0: सर, SDG 3 के लक्षणों को पूरा करने में कैसे मदद करता है ये?
1: देखिए, अभी SDG 3 का अगर आप देखें तो मैक्सिमम मोर्टैलिटी जो है हमारी नियोनेटल पीरियड में ही हो रही है। अभी भी भारत सरकार तो अर्ली नियोनेटल मोर्टैलिटी को less than 10 करने पे काफी जोर दे रही है, बट अभी भी लगभग 45% जो हमारी मोर्टैलिटी है वो नियोनेटल पीरियड में होती है। तो हमारे गोल्डन रूल होता था कि 1-1-1, यानी सबसे ज्यादा मोर्टैलिटी फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट मंथ में, फर्स्ट डे, और सबसे इम्पोर्टेंट रीजन उसमें प्री मैच्योरिटी है और लो बर्थ वेट है। तो अगर हम प्री मैच्योरिटी और लो बर्थ वेट दोनों को एड्रेस कर पाएंगे तो SDG का लक्ष्य जो है वो हासिल करने में हमें बहुत आसानी होगी। तो ये दो मेन रीजन है नियोनेटल मोर्टैलिटी।
0: सर, आई थिंक सारे सवालों का आपने जवाब दे ही दिया है। बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि मतलब आपने बता दिया है कि कैसे माँ बाप और मतलब परिवारजन सहयोगकर्ता बन सकते हैं, लेकिन आप समुदाय को कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि जन्म के तुरंत बाद माँ को, फैमिली को, पिता को क्या करना चाहिए, मतलब कैसे सहयोगकर्ता बनना चाहिए?
1: जन्म के तुरंत बाद मैं तो यही बोलूंगा कि बच्चा उनका है, वही सबसे बढ़िया देखभाल कर सकते हैं। ये साइंस भी कहती है, ये हमारा कल्चर भी कहता है। तो जन्म के तुरंत बाद बच्चे को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देना, उनको माँ के करीब रखना, माँ और बाप के करीब रखना, ये एंश्योर करना कि उसको फीडिंग मिल रहा है और नेचुरल फीडिंग मिल रहा है। नेचुरल फीडिंग से मेरा मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। और ये एंश्योर करना कि बच्चा किसी भी तरीके से हाइपोथर्मिया में, यानी बच्चे को कभी ठंड ना लगे। और इसका सबसे बेहतर उपाय है कि बच्चा स्किन के कॉन्टेक्ट में रहे। इसका एक सिंपल रीजन ये है कि हमारा टेम्परेचर 37, बच्चे को चाहिए 37, स्किन पे टेम्परेचर आया 37, इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी चल रहा, इसलिए स्किन सबसे बेहतर तरीका है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उसको मेंटेन करें, साफ सफाई, यानी कि बच्चे, खासकर प्रीमेच्योर बच्चे, बहुत उनका इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं होता है, तो इन्फेक्शन होने की बहुत संभावना रहती है। और इन्फेक्शन रोकने के बड़े सिंपल तरीके होते हैं, आपके शरीर जिससे आप चिपका रहे हैं वो साफ होना चाहिए, बच्चे के कपड़े साफ होने चाहिए, और बहुत ज्यादा हैंडलिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि बहुत ज्यादा बच्चे। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। तो जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे तब तक ये बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा होना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा एक चीज और, ऐसी परिस्थितियों में क्लिनिकल डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी होता है, किस बच्चे को कितनी देर के लिए रखना है। किसी को 4 घंटे चाहिए, हम किसी को 6 घंटे चाहिए, किसी को 12 घंटे चाहिए, किसी को डायरेक्ट ब्रेस्ट मिल्क दे सकते हैं, कहीं नहीं होता। तो ऐसी परिस्थिति में अपने डॉक्टर, अपने नर्स पे विश्वास भी करें कि वो आपके बच्चे के लिए ही सारे काम कर रहे हैं
0: जी।
1: ये इसमें विश्वास करना बहुत जरूरी।
0: तो सर, इसकी अवेयरनेस अभी कम है, इसकी अवेयरनेस और लोगों में फैलाने की ज्यादा जरूरत है।
1: इसकी अवेयरनेस बहुत अभी बहुत कम है। हम देखते हैं अभी बहुत सारे लोग इस चीज को समझ नहीं पाते, खासकर जब हम बोलते हैं कि 4 घंटे 6 घंटे, तो उनको लगता है कि इसकी क्या जरूरत है।
0: अवेयरनेस कम है तो क्या कुछ मिथ्स भी हैं लोगों के दिमाग में इसको लेके?
1: मिथ्स हैं, मिथ्स, लोग इसके जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं पाते। तो जैसे ही मान लो कंगारू मदर केयर आपने अस्पताल में शुरू भी करवा दिया और ये बोल के भेज दिया कि आप घर पे कर लेना, लेकिन क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंस लोग समझ नहीं पाते इसलिए वो घर पे जाके करते नहीं है और बच्चा फिर वापस लैंड करता है ओपीडी में कि बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है ना, बच्चा का वजन कम हो गया। तो ये थोड़ा सा लोगों को शायद समझाने की जरूरत है, इसका नेगेटिव मिथ्स नहीं है बट इसके पॉजिटिव मिथ्स भी नहीं है।

0: इसी के साथ हम अपना आज का कार्यक्रम सेहत सही लाभ कही यहीं पर संपन्न करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर लेते हैं सेहत की शपथ।
1: हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।
0: तो साथियों, आप समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का सेहत सही लाभ कई के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, लेकिन सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
3: मैंने वादा किया था बहू से, मैंने वादा किया था मुझे पूरा करना ही होगा।
4: लो माँ भी आ गई। माँ देखो, तुम्हारा पोता बिल्कुल मुझ पे गया है ना।
3: ये सब बाद में, पहले बच्चा इधर ला। ये ले बहू, लगा अपने सीने से और पिला दूध। देख किया ना मैंने वादा पूरा, पहले घंटे की सुरक्षा का।
5: हाँ माँ जी।
6: जन्म के पहले घंटे में बच्चे को मिले माँ के दूध और तन की गर्मी की सुरक्षा। देर की तो बच्चे की जान को हो सकता है लगभग डेढ़ गुना ज्यादा खतरा। याद रहे वादा पहले घंटे की सुरक्षा का।
7: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
8: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
9: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसा विषय है, डिप्रेशन, अवसाद, तनाव। इससे हम कैसे अपने आप को बचा कर रखें। जी हाँ, इससे अगर आप अपने आप को बचा कर रख पाएंगे तो निश्चित तौर पर आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निरोग रहेंगे। चलिए बात करते हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचें। तो बात सामने आती है कि डिप्रेशन से उबरने के लिए व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में व्यायाम, योग और ध्यान को अवश्य जगह देनी चाहिए। ये डिप्रेशन के रोगी के मस्तिष्क को शांत करता है, साथ ही उनमें हार्मोनल असंतुलन को ठीक करता है। व्यक्ति को सुबह उठकर सैर पर जाना चाहिए, उसके बाद योगासन और प्राणायाम करना चाहिए। रोगी को ध्यान या मेडिटेशन करना चाहिए। विटामिन B12 सेरोटोनिन बनाता है जो हमारे मूड को सही और खुश रखता है, लेकिन अगर विटामिन B12 की कमी होगी तो इससे मूड स्विंग की दिक्कत हो सकती है। अगर लंबे समय तक ये दिक्कत बनी रहेगी तो इससे पीड़ित व्यक्ति डिप्रेशन में जा सकता है। इसलिए शरीर में विटामिन B12 की डोज लेनी चाहिए। होम्योपैथी में कुछ बेहतरीन दवाएं हैं जो डिप्रेशन से आपको उबार सकती हैं। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, डिप्रेशन से अपने आप को बचा कर रखें। अब इसी में आगे हम बात करते हैं बोटुलिज्म क्या है। तो इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि बोटुलिज्म हमारे शरीर में क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म बैक्टीरिया का संक्रमण है जो हमारे शरीर में जहरीली स्थिति पैदा कर देती है। बोटुलिज्म घातक हो सकता है और इसमें आपातकालीन चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता पड़ सकती है। ये शिशुओं में भी हो सकता है, ये भोजन में फैल सकता है, साथ ही एक घाव को संक्रमित कर सकता है। बोटुलिज्म विषाणु अक्सर फलों और सब्जियों की सतहों और समुद्री भोजन में पाए जाते हैं। कम ऑक्सीजन की स्थिति में आमतौर पर ये तब बनता है जब भोजन को घर पर अनुचित तरीके से संसाधित अर्थात डिब्बा बंद किया जाता है या भोजन को फ्रिज में अधिक दिनों तक रखा जाता है। बोटुलिज्म एक दुर्लभ लेकिन गंभीर बीमारी है जो विष के कारण होती है, शरीर की नसों पर हमला करती है। इससे सांस लेने में कठिनाई, मांसपेशी पक्षाघात और यहां तक कि मृत्यु भी हो सकती है। कोशिश करें कि ताजा और ठीक से पका हुआ भोजन ही करें। पके हुए भोजन को फ्रिज में जमा कर खाने की लत अच्छी नहीं है, यथा संभव बचना चाहिए। अब हम बात करने जा रहे हैं, सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रोसेस्ड और पैक्ड फूड आपको कैंसर का मरीज बना रहा है, मरीज बना सकता है। तो विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रोसेस्ड फूड का सीधा मतलब है कि पैकेट वाला खाना। जब किसी नेचुरल खाने को एक प्रक्रिया के जरिए रिफाइन करके उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव को जोड़कर उसकी पैकेजिंग की जाती है तो उसे प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आजकल प्रोसेस्ड फूड लोगों की पसंदीदा फूड बन चुकी है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, चिकन नगेट्स, फ्राइज वगैरह वगैरह। भले ही ये चीज खाने में आपको काफी स्वादिष्ट लगती हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लंबे वक्त तक इनका सेवन करने से अपने शरीर को काफी नुकसान हो सकता है। फूड के प्रोसेसिंग के दौरान इसकी सारी विटामिन हीट के चलते खत्म हो जाती है। इसमें कैलोरी की मात्रा भी काफी ज्यादा होती है। प्रोसेस्ड फूड में अक्सर अतिरिक्त चीनी, सोडियम और वसा का अस्वास्थ्यकर स्तर शामिल होता है। ये तत्व हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन का स्वाद बेहतर बनाते हैं, लेकिन इनकी अधिकता से मोटापा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और मधुमेह जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। इसलिए प्रोसेस्ड और डिब्बा बंद भोजन से बचें, तभी स्वास्थ्य बचा पाएंगे। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
1: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। नमस्ते क्लास, टीवी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हम जानते हैं कि क्लास में हम सोते हैं तो नुकसान हमारा होता है, इस क्लास में आपको और हर देशवासी को ध्यान देना होगा क्योंकि टीबी किसी को भी हो सकता है। टीचर जी,
3: जी
2: प्लीज बताइए आज आप क्या नया सिखाने वाली हैं?
3: जी सर, आज का सब्जेक्ट है टीबी के कोर्स को पूरा न करने के नुकसान। टीबी और भी खतरनाक हो सकता है और ड्रग रेजिस्टेंट बन सकता है, दवाइयों का असर कम होगा और इलाज हो जाएगा ज्यादा मुश्किल, साइड इफेक्ट की संभावनाएं बढ़ेंगी, उपचार चल सकता है और भी लंबा।
2: यानी टीबी की दवा का कोर्स अधूरा छोड़ना मतलब बड़ी कीमत चुकाना। तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें, इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
4: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सही।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: I'm sorry, Nami. मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज माफ कर दो।
1: It's over. अब सब कुछ खत्म हो चुका है शेर। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब तुमसे शादी नहीं।

0: तड़पता है दिल।
1: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ।
2: So what? मैं काम में बिजी था यार, तुम मुझसे मिलना चाहती थी, मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो।
1: You know, Shail, it really hurts.

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, कहीं देर ना हो जाए।
3: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
4: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स हैं, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
3: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
4: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
3: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
4: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
3: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
4: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
3: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
5: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
2: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
5: सो वेयर आर यू? द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University.
6: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान लोक संगीत के साथ। किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका, खेती किसानी में उपयोग होने वाली नई नई तकनीकों के बारे में, साथ ही मधुमक्खी पालन योजना की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका की। किसान मित्रों, पर्यावरण से हमें बहुत कुछ मिलता है, लेकिन बदले में हम क्या करते हैं? हम अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इस पर्यावरण और इसकी अमूल्य संपदा का हनन करने पर तुले हैं। हमारे द्वारा की गई हर अच्छी और बुरी गतिविधि का असर पर्यावरण पर पड़ता है। इस प्रकृति में मानव ही सबसे अधिक बुद्धिशील प्राणी माना जाता है, इसीलिए पर्यावरण के संरक्षण में इसकी जिम्मेदारी सबसे अधिक बनती है, जिनमें खासकर हमारे युवा, क्योंकि युवा कल के भविष्य के पथ प्रदर्शक हैं और पर्यावरण संरक्षण में उनकी भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता की हानि और प्रदूषण के बढ़ते खतरे के साथ युवा पीढ़ी से सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता पहले भी थी, किंतु परिस्थिति की नाजुकता देखते हुए आज ही आवश्यकता बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। युवा पीढ़ी के पास पर्यावरण संबंधी चुनौतियों का सामना करने और स्थायी समाधानों को बढ़ावा देने की क्षमता है। अब बात आती है कि हमारे जो युवा साथी हैं, वो पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका कैसे अदा कर सकते हैं। तो युवा साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से उसका उपयोग करके पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। युवा साथी अपने दैनिक जीवन में स्थायी आदतें अपना सकते हैं, जैसे कि ऊर्जा की बचत करना, पानी का संरक्षण करना, साथ ही साथ कूड़े का प्रबंधन करना। और हमारे युवा साथी पर्यावरण परियोजनाओं में भाग ले सकते हैं, जैसे कि पेड़ लगाना, पार्कों की सफाई करना और पर्यावरण संबंधी अभियानों में शामिल होना। इसके अलावा युवा नवाचार और प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पर्यावरण संबंधी समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारे युवा साथी पर्यावरण संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही पर्यावरण संरक्षण में हमारे युवाओं की भूमिका की, और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं चमन कपासिया।
1: अरे मानस मानस

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे चमन कपासिया से ये उपदेश। किसान मित्रों, आज का जो युग है वो तकनीकी युग है। हर क्षेत्र में आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसी तरह हमारी जो खेती किसानी है उसमें भी आजकल नई नई तकनीकें आ गई हैं। इन तकनीकों का सीधे फायदा किसानों को मिल रहा है। ग्रीन हाउस खेती भी ऐसी एक तकनीक है। इस तकनीक के माध्यम से हम मौसमी और गैर मौसमी फसलों की खेती 12 महीने लगातार कर सकते हैं। ये तकनीक फसलों की रक्षा करने और उन्हें कीटों के साथ साथ बीमारियों से मुक्त रखने में सहायक है। ग्रीन हाउस और पॉली हाउस में सब्जियों की खेती करने के कई फायदे होते हैं। इनमें सब्जियां सर्दियों में पाले और गर्मियों में तेज धूप से सुरक्षित रहती हैं। इससे मौसम और कीट रोग जनित नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें खेती करके फसलों को आवारा पशुओं से भी बचाया जा सकता है। वहीं ग्रीन हाउस में सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम रहने से इनके खराब होने का खतरा भी नहीं के बराबर रहता है। इससे हमारे किसान भाइयों को फसल खराब हो जाने की वजह से होने वाला आर्थिक संकट नहीं झेलना पड़ता है। तो किसान मित्रों, आप भी ग्रीन हाउस खेती तकनीक का उपयोग करके बेमौसम की फसलें उगा सकते हैं और अधिक आमदनी ले सकते हैं। और किसान मित्रों, अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। किस्सा रहेगा हरिश्चंद्र तारामती का और गायक कलाकार हैं सुनील चौहान और टीना पटौदी। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे राजा हरिश्चंद्र और तारामती के किस्से से ये रागनी। गायक कलाकार थे सुनील चौहान और टीना पटौदी। किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए किसानों को खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और किसान मित्रों, आपको बता दें कि सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही बी कीपिंग स्वरोजगार से जुड़े हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं तथा इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। और किसान मित्रों, अब बात आती है कि मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू किया जाए तो कितना खर्चा आएगा। तो किसान मित्रों, यदि आप शुरू में 10 पेटी से मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है। लेकिन जैसे जैसे मक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी, आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके इससे काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो किसान मित्रों, आप भी खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ सरकार की जो ऋण योजना है उसका लाभ उठा सकते हैं और मधुमक्खी पालन से अपनी आमदनी और बढ़ा सकते हैं। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं लोकेंद्र सिंह और किस्सा रहेगा हीर रांझे का।

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे लोकेंद्र सिंह से ये रागनी, किस्सा था हीर रांझे का। और इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर होगी इसी कार्यक्रम में आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अरे भैया रामू।
2: हाँ भैया श्यामू।
1: बड़े ढीले ढीले लग रहे हो, क्या हाल?
2: अरे भैया श्यामू, हाल बेहाल है और ये पथरी का दर्द है, निकलवानी है और जेब भी खाली है।
1: बस इतनी सी बात? चल ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल मेरे साथ, जहाँ छोटी मोटी सर्जरी सिर्फ 2,500 और बड़ी सर्जरी सिर्फ 6,000 रुपए में हो रही है।
2: अच्छा तो भैया लेके चल, अभी चल।
1: तो अभी चलो।
3: अगर आप भी हैं ग्रामीण और गरीब तबके से, तो ग्रेटर नोएडा का शारदा अस्पताल दे रहा है अच्छे इलाज का वादा। छोटे ऑपरेशन के 2,500 और बड़े ऑपरेशन के मात्र 6,000 रुपए। मरीज को बस देना होगा इम्प्लांट और सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले सामान का खर्च। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। एचआईवी और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक एचआईवी रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर एचआईवी संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग एचआईवी को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर एचआईवी रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर एचआईवी मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी एचआईवी की जांच कराएं।
3: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग AI साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। इस स्मार्ट के साथ मिलकर हम एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसके अंतर्गत महिलाओं से जुड़ी हुई बातें हो रही हैं, उनके हक की बातें हो रही हैं और उन्हीं के संबंध में लगातार बातें हम यहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी क्रम में हमें दूसरे स्टेशंस का भी सहयोग मिल रहा है। आइए अब हम सुनते हैं 90.4 मेगाहर्ट्ज़ सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम के अंतर्गत ये श्रृंखला।

0: भूले से भी मत कीजिए नारी का अपमान। नारी जीवन दायिनी है, नारी है वरदान। माँ बनकर जन्म देती, पत्नी बनकर संतान। जीवन भर छाया करे नारी वृक्ष समान। नारी कोमल निर्मला होती फूल समान। वक्त पड़े तो थाम ले बरछी तीर कमान। भूले से भी मत कीजिए नारी का अपमान। नारी जीवन दायिनी है, नारी है वरदान। नमस्कार सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा गढ़वाली रेडियो चैनल सामुदायिक रेडियो हेमलवाणी और ये वक्त है हिंसा को नो प्रोग्राम का। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र।
1: और मैं हूं सोनिका। दोस्तों, महिलाओं के साथ होती आई हिंसा को हम केवल मारपीट या यौन हिंसा के रूप में ही देखते हैं, और हम आपको पिछले एपिसोड में भी बता चुके हैं कि हिंसा और भी कई तरह से हो सकती है। हमारा समाज अक्सर ऐसे मामलों में महिला को ही दोषी मानने लगता है और तरह तरह की बातें बनाने लगता है,
0: पर हम महिला का पक्ष कभी भी नहीं देखते। बस सुनी सुनाई बातों को ही सच मानकर पीड़ित महिला को और अधिक दुखी करते हैं। एसिड अटैक, खरीद फरोख्त, वेश्यावृत्ति में धकेलना, पैसों के लिए लड़की का विवाह कर देना, पीछा करना, अश्लील हरकतें करना आदि सभी हिंसा का ही रूप है,
1: जिसमें बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि एक महिला का इसमें कोई दोष नहीं होता। दोस्तों, आज हम आपको इस रेडियो एकांकी के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे कि कैसे एक महिला बिना किसी गलती के भी आत्मघाती हमले का शिकार हो जाती है।
0: तो आइए सुनते हैं ये रेडियो एकांकी।
2: मैं अपने पापा की इकलौती परी हूँ। दुनिया के लिए तो बेटी हूँ, पर पापा ने मुझे कभी बेटे से कम नहीं समझा। 2 साल की थी मैं जब माँ हम दोनों को अकेला छोड़कर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। पापा ने मुझे कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरी हर छोटी से छोटी खुशी के लिए अपनी हर जरूरत को मार दिया। पान की एक छोटी सी दुकान पर जितना भी कमाया सब मुझ पर लगा दिया। बचपन से देखती आई हूँ मैं पापा को। कड़क सर्दी में भी अपने फटे जूते पहनकर दुकान जाते थे ताकि मेरी स्कूल की फीस दे सके। हम दोनों ही एक दूसरे की दुनिया थे। और तुम्हें पता है मेरा सबसे अच्छा दोस्त कौन है? और कोई नहीं, मेरे पापा। मेरे पापा ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मुझे बिना खाना खिलाए वो दुकान नहीं जाते, और जब तक वो घर नहीं आ जाते मैं भी खाना नहीं खाती। बहुत खुश हैं हम दोनों, और इसी हंसी मजाक में ये प्यारी सी जिंदगी कब 2 साल से 22 साल तक पहुँच गयी पता ही नहीं चला। मोहन चाचा के पास जब पहली बार किसी ने मेरे रिश्ते की बात की तो पापा को महसूस हुआ कि अब बिटिया की शादी की उम्र हो गई है। पापा की आंख में तो शादी के नाम से ही आंसू छलक आए थे। अरे अभी कहा मोहन, अभी तो बिटिया बहुत छोटी है। भाई साहब, 22 वर्ष की हो चुकी है हमारी लाडो, अब शादी तो करनी ही है ना। ये आंखें गीली क्यों कर रहे हो, चलो साफ करो इसे। हाँ यार मोहन, तू सही कह रहा है। हमारी बिटिया इतनी बड़ी हो गई पर उसे अभी वही गोद में खेलने वाली गुड़िया समझ रहा हूँ मैं तो। नहीं पापा, मैं नहीं करूंगी शादी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, बेटियां तो पराई होती हैं, शादी करके उन्हें दूसरे घर जाना ही होता है। नहीं पापा, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं शादी ही नहीं करूंगी, फिर तो कोई मुझे आपसे दूर नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कहते बेटा, देखना मैं तेरे लिए राजकुमार सा दूल्हा ढूंढ कर लाऊंगा। नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए राजकुमार, मुझे बस आप चाहिए। मैं नहीं करूंगी शादी। पर पापा तो पापा होते हैं ना, कहां मानने वाले थे। मुझसे पूछा तो मैंने अपने दोस्त राहुल के बारे में पापा को बताया। राहुल मुझसे बहुत प्यार करता है, पर मैं अपने पापा पर भरोसा करती हूँ। वो जो लड़का मेरे लिए चुनेंगे वही सबसे बेस्ट होगा। और पापा, वो तो मेरे दिल के सबसे करीब रहते हैं। उन्होंने झट से राहुल के घर वालों से रिश्ते की बात कर ली और बात शादी तक पहुंच गई। सब कुछ अच्छा जा रहा था। मेरी शादी की तैयारियों में पापा ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जो कुछ कमाया था सब लगा दिया। मेरे पड़ोस में रहने वाला मुकुल मेरे छोटे भाई जैसा है। वो भी शादी की तैयारियों में हमारे साथ पूरे जी जान से लगा रहा। लगता ही नहीं था कि मेरा कोई भाई नहीं है। पूरे दिन दीदी दीदी बुलाते थकता नहीं था। मैं तो हर साल उसे राखी बांधती हूँ। उसी का दोस्त विशाल मुझे बार बार परेशान करता रहता है। कहता है अगर तू मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा। खैर, मैंने उसकी बातों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ऐसे लफंगे बहुत देखे हैं मैंने।
3: मैं भी तो अपने पापा की शेरनी थी, ऐसे राह चलते कोई भी मुझे कुछ भी कह देगा और मैं डर जाऊंगी क्या?
4: रचने वाली हाथों में गहरी लाली,
3: आज मेहंदी वाली रात है।
4: रचने वाली हाथों में गहरी लाली, कहीं सखियां कहीं गलियां हाथों में खिलने वाली।
3: घर में खूब चहल पहल थी, पूरे गांव के लोग, मेहमान, सगे संबंधी और मेरी सहेलियों से घर में रौनक है। महिला संगीत में सब नाच गा रहे हैं। पापा को तो फुर्सत ही नहीं थी, पर मोहन चाचा भी बिल्कुल परिवार की तरह मेरी शादी की तैयारियों में लगे रहे। सब खुश थे, मिन माँ की बेटी पर सबका प्यार जो खूब लुट रहा था, नजर उतार रहे थे सब। मेरी खुशियों के लिए दुआएं कर रहे थे, बधाइयां बट रही थी।

मुझे भी महिला संगीत में नाचने के लिए बुलाया तो मेरे पैर तो रुके ही नहीं। जा ही रही थी कि झट से किसी ने मेरा हाथ खींचकर मुझे दीवार से सटा दिया। ये क्या विशाल, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? मेहमान की तरह आए हो, मेहमान बनकर खाओ पियो और चलते बनो। ऐसा कैसे चलते बनो? बिंदु, तुझे मेरा प्यार नहीं दिखता? मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। चल चल भाग चलते हैं, छोड़िए सब। क्या बकवास कर रहे हो? कल मेरी शादी है राहुल से और राहुल मुझे बहुत पसंद है। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। देख बिंदु, तू अगर मेरी नहीं हुई तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा, इसलिए कह रहा हूँ चल भाग चल मेरे साथ। मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा, तुझे बहुत प्यार करूंगा, चल मेरे साथ। तेरी आंखों में मुझे प्यार नहीं हवस दिखती है। निकल जा मेरे घर से और दोबारा शक्ल मत दिखाना मुझे, वरना शोर मचा दूंगी। चल निकल, अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर ऐसे नहीं जाने दूंगा तुझे हाथ से। अरे जाना, बहुत देखे तेरे जैसे।

0: ये नशा शा क्यों हो रहा है मुझे? क्या हो रहा है ये सब? विशाल, तुम हो क्या? शादी करने वाली है ना तू? चल शादी करते हैं, आज मैं तुझे दुल्हन बनाऊंगा। छोड़ विशाल, छोड़ मुझे, हाथ छोड़ मेरा, छोड़। अरे छोड़ने के लिए थोड़ी लाया हूँ तुझे यहाँ। क्या, कहाँ हूँ मैं? मेरे पापा कहाँ हैं? पापा, पापा कहाँ हैं आप? विशाल, पापा कहाँ हैं? पापा, मोहन चाचा, मोहन चाचा कहाँ हो आप लोग? विशाल, विशाल तुम मुझे कहाँ लाए हो ये बताओ मुझे। विशाल जाने दो मुझे, छोड़ दो प्लीज। मेरी बारात आने वाली है, आज मेरी शादी है। विशाल हाथ छोड़ो मेरा।
1: नहीं बिंदु रानी, अब बारात नहीं आएगी, अब तो सीधे सुहाग रात मनाई जाएगी।
0: विशाल, विशाल मेरा हाथ छोड़ दो, छोड़ो विशाल मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे।
1: अरे अरे भाग कहाँ रही है? रुक रुक, मुकुल मुकुल पकड़ उसे, देख तेरी दीदी भाग गई है यार, हाथ से जाने ना पाए। मुकुल पकड़ उसे।
0: मुकुल का नाम सुनते ही मेरे पैरों से जमीन खिसक गई।
1: मुकुल, तू
0: तू भी? मुकुल को तो मैंने अपने भाई से कम समझा ही नहीं।
1: भाग कर कहां जाओगी दीदी? बुरा मत मानना दीदी, मैं तो बस अपने दोस्त की मदद कर रहा हूँ, और आप तो मेरी दीदी हो ना, बस अपनी दीदी नहीं हो।
0: मुकुल, मुकुल मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, मुकुल मुझे इस दरिंदे से बचा ले भाई। अरे हर साल राखी बांधी है मैंने, तुझे मुझे जाने दे, उस राखी की लाज रख ले, मुझे बचा ले।
1: क्या दीदी, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? मेरा तो अपना मन ही बस में नहीं है, आखिर हूँ तो मैं भी मर्द ही।
0: मुकुल छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, मेरे घर जाना है, छोड़ दो।

0: बचा लो। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, बहुत दुहाइयां दी, पर जब भाई जैसे रिश्ते पर ही कलंक लग गया तो कौन सुनता मेरी। मेरी शादी है आज, जाने दो मुझे। अरे ये क्या है, ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, तेजाब मत डालो मुझ पर। मेरी जिंदगी तो वैसे भी बर्बाद कर चुके हो। नहीं प्लीज, ये तेजाब मत डालो मुझ पर, नहीं।
1: बहुत घमंड था ना तुझे अपने इस चेहरे पर। जा अब कर ली शादी, मैं भी देखता हूँ कौन करता है तुझसे शादी।
0: मेरा चेहरा जल रहा है। पापा एक कोने पर सहमे से बैठे थे, आंखों में आंसू, चेहरे पर मायूसी, और पूरे घर में सन्नाटा पसरा था। पुलिस का फोन घर में गया तो सब हैरान रह गए कि यह कैसे हो गया। मैं हॉस्पिटल में अधजली पड़ी थी, बेहोश। जिंदा थी या नहीं कुछ पता नहीं। एक रात में ही हमारी हंसती खेलती दुनिया रेत की तरह बिखर गई। और मुकुल मेरा भाई कहता था खुद को, वो भी आंसू बहाने हॉस्पिटल में आ गया। उसने भी सोचा जिंदा तो रहेगी नहीं दीदी, और बच भी गई तो किसी से कुछ कहने लायक नहीं रहेगी। किसी को कुछ पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हुआ। बस डॉक्टर ने इतना बताया कि दरिंदगी हुई है और तेजाब से मारने की कोशिश। पर वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है।

पूरे 6 दिन बाद मुझे होश आया। आंखें खोली तो पापा थे। मेरी आंखों से आंसू छलक पड़े। कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं पूछा, बस गले लगा लिया पापा ने। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद घर पहुंचे भी नहीं थे कि अरे देखो जरा, शादी के दिन ही भाग गई थी। नहीं करनी थी शादी तो पहले ही बोल सकती थी, गरीब बाप का इतना खर्च तो ना करवाती। बेचारा पैसे से भी गया और इज्जत से भी। ऐसी लड़कियों को तो मर जाना चाहिए। और भी तरह तरह की बातें लोग मुझे देखकर कह रहे थे। और पापा, पापा तो बस मुझे सहारा दिए, नजर झुकाए चलते जा रहे थे। लोगों की बातों ने मेरे जिंदा होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। टूट गई मैं। अफसोस होने लगा मुझे अपने लड़की होने पर। मेरी हिम्मत, मेरे सपने, मेरे अरमान सब एक झटके में टूट गए। क्या यही है एक लड़की की जिंदगी, कि बिना किसी गलती के भी उसे सवालों के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है? कैसा समाज है ये? घिन आती है मुझे ऐसे समाज से, घिन आती है।

0: अभी आप सुन रहे थे 90.4 मेगाहर्ट्ज सामुदायिक रेडियो स्टेशन हेवल वाणी द्वारा प्रस्तुत हिंसा को नो कार्यक्रम। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे सुनो शारदा 90.8 FM पर। ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 0120-4060-205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। सुनो शारदा 90.8 FM आप सबसे अपील करता है कि हम सबको महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और हिंसा को नो कहना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

0: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। टीबी हवा में फैलने वाला रोग है जो बिना मुंह ढके खांसने से और इधर उधर बलगम थूकने से फैलता है। आप बलगम को कागज के टुकड़े में थूक कर जला सकते हैं या एक राख भरे मटके में थूक कर जमीन में दबा भी सकते हैं। इससे रोगाणु फैलने का कोई डर नहीं होता। अपनी खिड़कियां खुली रखें जिससे खूब सारी रोशनी और शुद्ध हवा अंदर आए। ऐसे वातावरण में टीबी रोगाणु ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकते। और हाँ, अपने इलाज का कोर्स समाप्त जरूर कीजिए। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
2: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की निगरानी कर सकते हैं, किस तरीके से बच्चों को हम संस्कार दे सकते हैं और किस तरीके से वो अगर गलत दिशा में जा रहे हैं तो हम उनको कैसे रोक सकें। जी हाँ, कुछ ऐसी बातें कहीं ना कहीं सुनने को समझने को मिल जाती है, लेकिन कुछ चुनिंदा बातों को अगर हम ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा आगे चलकर आपका नाम रोशन करेगा, देश का भविष्य वो तय करेगा। जी हाँ, बात करते हैं आपका बेटा या बेटी को अगर कुछ ऐसे सबक सिखाएंगे तो निश्चित तौर पर आपका बच्चा एक संस्कारी बेटा या बेटी बनकर आगे बढ़ता रहेगा। जरूरी है कि उनकी गलतियों पर हमें पर्दा नहीं डालना है, जरूरी है कि उनकी गलतियों को सुधार में लाकर आगे बढ़ते हुए चले जाना है। बात करते हैं कुछ ऐसे ही विषय के विषय में। बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे इसका पता किसी को नहीं, लेकिन वो अच्छे इंसान बनेंगे या नहीं ये आप पर निर्भर करता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होंगे। बच्चे भी वही आम की ही तरह होते हैं जिसको आपको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी आदतें नहीं सिखाएंगे तो आपके लिए बच्चों के बेहतर भविष्य को तय करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि शुरू से ही बच्चों को अच्छी आदतें सिखाई जाएं। हालांकि मौजूदा वक्त में हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर उन पर हंसते हैं जो उन्हें आगे चलकर बिगाड़ने का काम करती हैं। आइए आपको बताते हैं कि बच्चों को सिखाई जाने वाली 5 ऐसी अच्छी आदतों के बारे में जो उन्हें अच्छा इंसान बनने में मदद करेंगी। बात करते हैं सबसे पहले ईमानदारी के विषय में। ईमानदारी एक ऐसा विषय है कि अगर आपके पास ये है तो निश्चित तौर पर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता और इसकी जो खुशबू है वो चारों दिशाओं में फैलती है। जी हाँ, बच्चों को शुरू से ही ईमानदारी के रास्ते पर चलना सिखाना होगा और इससे आपको 2 फायदे होंगे। पहला तो ये कि बच्चा सच बोलने में कभी आपसे कतराएगा नहीं और दूसरा उसे अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। ईमानदारी बच्चों में मासूमियत बरकरार रखने का काम करती है। आप बच्चों को झूठ बोलने के परिणामों के बारे में बताएं और उन्हें गलती स्वीकार करना सिखाएं। अच्छा स्वभाव यानी कि गुड मैनर्स टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को जल्द से जल्द अच्छा स्वभाव अपनाना सिखाना चाहिए। अच्छा स्वभाव आपके बच्चे का सोशल IQ तो बढ़ाता ही है, साथ ही उसे बेहतर तरीके से निखार कर सामने आने में भी मदद करता है। अच्छा स्वभाव उसे उसके जीवन में अच्छा इंसान बनने में भी मदद करता है। बात करते हैं हेल्दी फूड्स के विषय में। हेल्दी फूड्स का चुनाव करना ये भी एक बड़ा सब्जेक्ट है, यानी हेल्दी फूड्स सिलेक्शन टू टीच टू किड्स। माता पिता को अपने बच्चों को हमेशा हेल्दी फूड्स का विकल्प चुनना सिखाना चाहिए। जब बच्चों को हेल्दी फूड्स के बारे में पता होगा तो अपने जीवन में हेल्दी रहना वो सीख पाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल भी फॉलो करेंगे। हेल्दी फूड्स बच्चों के स्वास्थ्य को हेल्दी रखने की एक गारंटी है जिसे हर माता पिता को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। बात करते हैं सम्मान की। सम्मान हर कोई चाहता है, लेकिन अगर आप किसी को सम्मान देते हैं तो निश्चित तौर पर ये आपके सम्मान की बात है, यानी कि रेस्पेक्ट टू टीच टू किड्स। छोटे बड़ों का सम्मान करना हर किसी को आना चाहिए। ये एक ऐसा भाव है जो हर बच्चे में होना चाहिए, फिर चाहे वो बड़े हों या छोटे, सभी का आदर बहुत जरूरी है। एक अच्छा इंसान बनने के लिए बच्चों को शुरू से ही आदर सम्मान करने का भाव सिखाना बहुत जरूरी है। बात करते हैं टाइम की, यानी कि टाइम मैनेजमेंट की। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि उन्हें अपना समय कब कहाँ खर्च करना है, क्योंकि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता और उस समय को बर्बाद करना आपके लिए और भी ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए बच्चों को समय का प्रबंधन सिखाना बहुत जरूरी है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रण विजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्ते क्लास, टीबी को हराने की क्लास में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे टीबी पेशेंट्स के साथ पेश आना चाहिए, बिल्कुल एक दोस्त की तरह, है ना टीचर जी?
2: राइट सर, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि टीबी का इलाज संभव है। टीबी छूने, हाथ मिलाने से नहीं फैलता। टीबी मरीजों से मिलाएं दोस्ती का हाथ, न करें भेदभाव।
1: तो आप समझ गए, टीबी से कीजिए दुश्मनी, टीबी के मरीजों से दोस्ती, क्योंकि टीबी से हम सबको मिलकर लड़ना है। तो आइए इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। देखिए, टीबी हारेगा देश जीतेगा। फिल्म मेकिंग एक, देखिए टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: छह माह का होने के बाद बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उसे अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है और ये बड़ी हुई जरूरत केवल माँ के दूध से पूरी नहीं हो पाती है। इसलिए छह माह पूरे होने पर बच्चे को ऊपरी आहार देना शुरू कर देना चाहिए। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करते हैं कि डाइजेशन बढ़ाने के लिए अगर आप चाय पी रहे हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि 4 हर्बल चाय पीजिए। वो कौन कौन सी है इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन अगर आपका पेट फूला हुआ है तो वो कम हो जाएगा, या यूं कहें कि पिचक जाएगा, या यूं कहें कि वेट लॉस होगा। जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। ये एक समस्या है, अब बात करते हैं इसी विषय में। पेट फूलने पर आराम के लिए आप पीजिए हर्बल टी। पेट फूलने की समस्या गर्मियों में बढ़ सकती है और मौसम बदलने के साथ ही लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं होने लगती हैं और इसकी वजह से पेट में गैस बनने लगती है और पेट फूलने लगता है। गर्मियों में बार बार ठंडा पानी पीने, हैवी मील खाने, ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से डाइजेशन स्लो हो जाता है। इसी वजह से लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। पेट फूलने की समस्या से आराम पाने के लिए हर्बल टी आप पी सकते हैं। आइए जानते हैं कि गर्मियों में किन नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनी चाय पीने से आपको ब्लोटिंग की समस्या से आराम मिल सकता है। तो बात सामने आती है कैमोमाइल टी के विषय में बात करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कैमोमाइल के फूलों से तैयार होने वाली हर्बल टी इन्फ्लेमेशन कम करती है और स्ट्रेस से भी राहत दिलाती है। कैमोमाइल टी पीने से पेट की गैस कम होती है। इसी तरह पीरियड्स के दौरान होने वाले मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स की समस्या और जोड़ों के दर्द से राहत पाने के लिए भी कैमोमाइल की चाय लाभकारी मानी जाती है। सौंफ की चाय। गर्मियों में सौंफ का शरबत पीने से शरीर को ठंडक मिलती है। ये शरीर के तापमान को संतुलित रखता है। इसी तरह सौंफ के दानों को उबालकर बनाई जाने वाली चाय भी गर्मियों में डाइजेशन बूस्ट करने का काम करती है। ये चाय पीने से पेट में भारीपन, गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। अब बात करते हैं अजवाइन की चाय के विषय में। ये देसी मसाला गैस और अपच जैसी समस्याओं से आराम दिलाने का खास नुस्खा है। अजवाइन के बीजों को फाकने से अर्थात लेने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या कम होती है और ये खाने का फ्लेवर भी बढ़ाता है। अजवाइन के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर रखें और अगले दिन इस पानी को अच्छी तरह से उबालें, थोड़ा सा काला नमक मिलाएं और इस चाय को छानकर पिएं। इस तरह आप स्वादानुसार शहद भी इस चाय में मिला सकते हैं। अदरक और शहद की चाय। जी हाँ, पेट की समस्याओं से आराम पाने के लिए अदरक यानी कि जिंजर का इस्तेमाल बहुत असरदार माना जाता है। ये पेट की समस्याओं को कम करने के लिए अदरक के साथ नींबू, शहद और हल्दी जैसी चीजों को मिलाकर हर्बल टी बनाई जाती है। अदरक की चाय पीने से डाइजेशन बेहतर बनता है और इससे पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या कम होती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेंगी 10 से 4।
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937700। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। अभिवादन स्वीकार कीजिए। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है
2: भाई मुकेश शर्मा जी ने भिलाई छत्तीसगढ़ से। वो लिखते हैं,
0: बहुत आसान है किसी पर उंगली उठाना, लेकिन उससे कहीं अधिक कठिन काम है उंगली पकड़कर उसे ऊपर उठाना।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, आलोचना करना या उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन किसी को ऊपर उठाना उतना ही कठिन। और अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और संदेश।
0: तो हमें संदेश मिला है केंद्रपाड़ा उड़ीसा से देश दीप दास का,
2: तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान,
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा का,
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
0: तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला
2: ये भी जानिए।
0: तो विमलेश जी, आज ये भी जानिए श्रृंखला में क्यों ना हम बात करें एक ऐसे महान परमाणु वैज्ञानिक की जिसे अपने किए पर जीवन भर अफसोस रहा।
2: जी हाँ जी जी, अक्सर देखा जाता है वैज्ञानिक अपने आविष्कारों से खुश होते हैं
0: जी।
2: लेकिन इस वैज्ञानिक की बात ही अलग है। ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर की। वो अमेरिका के कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक थे और परमाणु बम के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
0: श्रोताओ, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 को हुआ। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन योजना के वैज्ञानिक निर्देशक थे। श्रोताओ, जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जन्म अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 22 अप्रैल 1904 को हुआ
2: जी।
0: वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के वैज्ञानिक निर्देशक थे।
2: दुनिया के पहले परमाणु बम का परीक्षण 16 जुलाई 1945 को किया गया। इस परीक्षण को ट्रिनिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षण अमेरिका के न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया गया था।
0: ये परीक्षण सफल हुआ और लगभग एक महीने से भी कम समय के बाद अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी नामक जापानी शहरों पर परमाणु बम गिराया। पहले 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और फिर 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर दो परमाणु बम गिराए गए।
2: पहले परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे परमाणु बम का नाम था फैट मैन। ये बहुत भयानक और खतरनाक परमाणु हमला था।
0: इसमें लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग स्थायी रूप से अपंग हो गए।
2: परमाणु बम से निकलने वाले रेडिएशन का प्रभाव लगभग 30 वर्षों से भी अधिक बना रहा, जिसका परिणाम कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा।
0: श्रोताओं कहते हैं, जब जापान पर बम गिराए गए और भारी संख्या में जान माल का नुकसान हुआ तो ये समाचार सुनकर ओपेनहाइमर के मुंह से निकला, मैं मृत्यु बन गया हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट डिड आई डू।
2: श्रोताओं जीवन भर वे अवसाद के शिकार रहे। उन्हें इस काम का बहुत पश्चाताप था। उन्होंने राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन से कहा, मुझे लगता है कि मेरे हाथों पर खून है।
0: श्रोताओं, इसी अवसाद की अवस्था में 62 वर्ष की आयु में सन 1967 में उनका देहांत हो गया। उनका कहना था, दुनिया को हथियारों की नहीं शांति की जरूरत है। मैं आने वाली पीढ़ियों से आग्रह करूंगा कि विश्व शांति स्थापित करने में अपना योगदान दें और याद रखें, शांति शुरू होती है आपके घर से।
2: आशा है श्रोताओं आपको हमारी ये जानकारी अवश्य पसंद आई होगी।
0: तो अब श्रोताओं, आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। प्रश्न है, नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था।
2: प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं, नागासाकी में गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था। 8800440559 है हमारा IVRS का नंबर
0: और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता, तो जरूर उत्तर दीजिएगा।
2: और आइए अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम और जानते हैं
0: प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति के बारे में
2: जी।
0: इस कार्यक्रम के द्वारा आपको पता चलेगा कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा बहुत सम्मानजनक थी
2: जी।
0: और वे आध्यात्मिक रूप से भी सर्व सम्पन्न थी।
2: इस क्रम में सुनते हैं कार्यक्रम गार्गी।
3: वैदिक काल की भारतीय महिलाएं अपनी तीव्र बुद्धि और ऊंचे आध्यात्मिक गुणों के लिए संसार भर में प्रसिद्ध हैं। वेदों की ऋचाओं को गढ़ने में भी भारत की बहुत सी स्त्रियों का योगदान रहा है। इन्हीं में से एक है गर्ग वंश में वचकनु नामक महर्षि की पुत्री वचकनवी गार्गी। इन्होंने ऋग्वेद की कई ऋचाएं भी लिखी हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में इनका मुख्य रूप से वर्णन है। आज फिर राजा जनक ने दार्शनिक सभा का आयोजन किया है। इस वार्षिक सभा में हर वर्ष शिक्षा और ज्ञान के विषयों पर वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। तो आइए चलते हैं राजा जनक की राजसभा में।
4: आज देखते हैं सभा में क्या होता है। कारण तो है। अरे अरे मित्र, मैं तो प्रतिवर्ष राजा जनक की दार्शनिक सभा में आता हूँ। उनकी सभा में गार्गी नामक विदुषी दार्शनिक हैं। उनका वाद विवाद अत्यंत ज्ञानवर्धक होता है।
5: गार्गी जी? हाँ। अच्छा अच्छा, मैं भी उन्हीं से मिलने आया हूँ। सुना है वो बहुत बड़ी विदुषी हैं।
4: निसंदेह निसंदेह।
5: अरे राजसभा कितनी सुंदर सजी है।
4: हाँ देखो तो, यहाँ कितने विद्वान आए हुए हैं, कितना सुंदर आयोजन है। हम तो धन्य हो गए राजा जनक जैसे ज्ञान प्रेमी की सभा में आकर।
6: अरे इसी से तो शिक्षा का प्रसार होता है और ज्ञान वर्धन भी।
4: हाँ ये तो सत्य है।
7: रोचक रहेगा आज का।
5: अरे देखो देखो, महाराजा जनक और महारानी सुनैना पधार रहे हैं।
4: मिथिला नरेश, महाराजा धीराज, राजा जनक, रानी सुनैना के साथ पधार रहे हैं।
8: महाराज जनक की जय, महारानी सुनैना की जय, महाराज जनक की जय, महारानी सुनैना की जय।
9: शांत शांत। इस सभा में आए हुए सभी आदरणीय अति विशिष्ट ऋषियों, विद्वानों एवं विदुषियों को प्रणाम। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। महारानी सुनैना
10: जी,
9: आप भी अपना स्थान ग्रहण कीजिए।
10: जी महाराज।
9: सभा के आरंभ में हम चाहते हैं कि आदरणीय विदुषी गार्गी महर्षि याज्ञवल्क्य से कुछ प्रश्न पूछें। इस बारे में आप क्या कहती हैं महारानी?
10: उत्तम, अति उत्तम विचार।
4: साधु साधु, देखो महाराज जनक ने स्त्री से शुभारंभ कराया है इस प्रतियोगिता का।
11: महर्षि याज्ञवल्क्य और गार्गी का वाद विवाद तो सुनने योग्य होगा।
6: निसंदेह, दोनों ही बहुत बड़े ज्ञानी जो हैं।
9: गार्गी
12: जी, महाराज जनक आपको और मिथिला की महारानी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
6: प्रणाम,
9: प्रणाम।
12: महर्षि याज्ञवल्क्य जी और सभी सभाजनों को भी मेरा सादर प्रणाम।
13: आयुष्मति भव।
12: महर्षि याज्ञवल्क्य जी से मेरा पहला प्रश्न है। महर्षि, अपने आप को जानने के लिए अर्थात आत्मविद्या के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है, परंतु महर्षि आप तो ब्रह्मचारी नहीं हैं, आपने तो दो दो विवाह किए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि आप अपने जीवन से एक उपयुक्त उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं?
4: ये कैसा प्रश्न कर लिया गार्गी ने?
11: परंतु प्रश्न एकदम उपयुक्त है। महर्षि की दो पत्नियां हैं, उत्तर तो देना ही होगा। कितनी निडर है गार्गी।
6: सुनो सुनो, आगे सुनते हैं।
11: हाँ, सत्य सत्य।
13: पहले मैं तुमसे पूछता हूँ गार्गी, ब्रह्मचारी कौन होता है?
12: जो परम सत्य की खोज में लीन रहे।
13: तो तुम्हें ये क्यों लगता है कि एक गृहस्थ व्यक्ति परम सत्य की खोज नहीं कर सकता?
12: महर्षि, जो स्वतंत्र है केवल वही सत्य की खोज कर सकता है, और विवाह तो एक बंधन है।
13: विवाह बंधन है?
12: जी हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं।
13: तुम ऐसा कैसे कह सकती हो गार्गी?
12: ऋषिवर, विवाह में व्यक्ति को औरों का ध्यान रखना पड़ता है। हर समय मन किसी न किसी चिंता में लीन रहता है, और संतान होने पर उसकी चिंता अलग। ऐसे में मन सत्य को खोजने के लिए मुक्त कहां से है? तो सच में विवाह बंधन ही तो है महर्षि।
11: ये तो सत्य कहा गार्गी ने। हाँ हाँ, ऐसे प्रश्न तो गार्गी ही पूछ सकती हैं।
13: अच्छा गार्गी, ये बताओ, किसी की चिंता करना बंधन है या प्रेम?
12: महर्षि, प्रेम भी तो बंधन ही है।
9: उत्तम,
13: अति उत्तम कार्य।
8: उत्तम, उत्तम, अति उत्तम, अति उत्तम।
10: कितनी सरलता से ऋषि को अपने शब्दों में ही उलझा दिया है गार्गी ने।
13: हाँ, कितनी विद्वान है गार्गी, अद्भुत। परंतु गार्गी, सच्चा प्रेम तो मुक्त कर देता है। जब प्रेम में स्वार्थ होता है तो वो बंधन बन जाता है। मुख्य समस्या प्रेम नहीं, स्वार्थ है।
12: किंतु मेरा मानना है प्रेम सदा स्वार्थ ही होता है महर्षि।
13: प्रेम से आशाएं जुड़ने लगती हैं, इच्छाएं जुड़ने लगती हैं, तब स्वार्थ का जन्म होता है। ऐसा प्रेम अवश्य बंधन बन जाता है। जिस प्रेम में अपेक्षाएं ना हो, इच्छाएं ना हो, जो प्रेम केवल देना जानता हो, वही प्रेम मुक्त करता है।
12: सुनने में तो आपके शब्द अच्छे लग रहे हैं महर्षि, परंतु क्या आप इस प्रेम का कोई उदाहरण दे सकते हैं?
11: उत्तम कोटि का
13: गार्गी, अपनी आंखें खोलो और देखो, पूरा जगत निस्वार्थ प्रेम का ही प्रमाण है। ये प्रकृति ही निस्वार्थता का सबसे महान उदाहरण है। ये निस्वार्थ प्रेम ही है गार्गी।
12: जी ऋषिवर, फिर ऐसे प्रेम से सत्य को खोजने में कैसी बाधा? ऋषिवर, आपने मेरी ज्ञान की पिपासा को शांत किया, आपको कोटि कोटि प्रणाम।
13: साधु साधु। महर्षि, आपने तो ज्ञान और प्रेम की वास्तविक दिशा हमें दिखा दी है।
10: ऋषिवर, आपके ज्ञान वर्धक वचनों को सुनकर हम धन्य हो गए।
13: धन्यवाद महाराज जनक, धन्यवाद महारानी। और पुनः मैं गार्गी जी से कहना चाहता हूं कि जब प्रेम में स्वार्थ न हो तभी वो प्रेम होता है।
11: अद्भुत, कितने सुंदर विचार हैं महर्षि के।
5: ऐसे ही वाद विवाद से तो ज्ञान वर्धन होता है।
6: निसंदेह गार्गी के आत्मविश्वास के कारण स्त्रियों को ज्ञान के क्षेत्र में और आदर के साथ देखा जाएगा।
11: कितनी विनम्रता और सहनशीलता का परिचय दिया है। धन्य है विदुषी गार्गी।
14: धन्य है भारत की नारी, धन्य है विदुषी गार्गी।
11: इतनी ज्ञानी होते हुए भी लेश मात्र अहंकार नहीं है इनमें।
6: वाह वाह, अति सुंदर, ये उत्तम कोटि की विदुषी है। वास्तविक
13: हम धन्य हुए इतने उच्च स्तर के शास्त्रार्थ को सुनकर।
14: हम धन्य हुए।

0: हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी महाराज जनक ने शास्त्रार्थ सभा का आयोजन किया है। राजा जनक की सभा में याज्ञवल्क्य और गार्गी का शास्त्रार्थ सुनने के लिए यहां बहुत दूर दूर से ज्ञानी और ऋषि मुनि पधारे हैं।
1: इस बार तो राजा जनक ने पुरस्कार भी रखा है।
2: हाँ हाँ, 1000 गायें पुरस्कार में दी जाएंगी।
3: अरे और यही नहीं, गायों के सींग भी सोने से मढ़े हुए हैं।
2: अरे भाई देखें इस बार कौन विजेता होंगे।
1: अरे सुना नहीं, महाराज जनक ने कहा है जो भी सबसे बड़ा ज्ञानी होगा उसे ही ये पुरस्कार दिया जाएगा।
3: हाँ।
1: अरे सुनो सुनो सुनो, याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं।
4: हे सामश्रवा, गौशाला में खड़ी सभी 1000 गायों को हमारे आश्रम की ओर हांक लो।
5: ठहरिए ऋषिवर।
2: अरे ये गार्गी ने महर्षि को रोक ले।
1: अरे सुनो सुनो
5: सुनो सुनो सुनो, क्या कहती है। हे ऋषिवर प्रणाम, क्या आप स्वयं को सबसे बड़ा ज्ञानी मानते हैं जो आपने गायों को हांकने के लिए अपने शिष्यों को आदेश दे दिया।
4: गार्गी, मैं स्वयं को ज्ञानी नहीं मानता, परंतु इन गायों को देख मेरे मन में मोह उत्पन्न हो गया।
5: आपको मोह हुआ, किंतु ये इस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए योग्य कारण तो नहीं है ऋषिवर। यदि आपकी आज्ञा हो तो ऋषिवर मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूंगी। आप इनके उत्तर दे पाए तो आप इन गायों को निश्चित ही ले जाए।
4: क्या है,
1: राजा जनक की सभा में सब विद्वानों के सामने कोई विरला ही महर्षि से प्रश्न पूछ सकता है,
2: और ये नारी होते हुए भी कितना साहस से भरा हुआ स्वर है।
5: ऋषिवर प्रश्न सुनिए। जल के संबंध में कहा जाता है कि हर पदार्थ इसमें घुल मिल जाता है, तो ये जल किसमें जाकर मिल जाता है। अर्थात भगवान, ये समस्त पार्थिव पदार्थ जिस प्रकार जल में ओतप्रोत हैं, उस प्रकार जल किस में ओतप्रोत है।
4: जल वायु में ओतप्रोत है।
5: और वायु किस में ओतप्रोत है।
4: वायु आकाश या अंतरिक्ष में ओतप्रोत है।
5: तो अंतरिक्ष।
4: अंतरिक्ष गंधर्व लोक में।
5: गंधर्व लोक।
4: आदित्य लोक में।
5: ऋषिवर ये बताइए, आदित्य लोक किस में ओतप्रोत है।
4: चंद्रलोक में गार्गी।
5: चंद्रलोक किस में।
4: नक्षत्र लोक में।
5: और

गार्गी, प्रश्न पूछना ज्ञान को विस्तार देना है। तुम्हारी जिज्ञासा ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया। आज से तुम्हें ब्रह्मवादिनी के नाम से जाना जाएगा।

0: महारानी सुनैना
1: जी,
0: विदुषी गार्गी के इस शास्त्रार्थ से न केवल उनका अपितु हमारा भी ज्ञान वर्धन हुआ है।
1: जी महाराज, इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि ऐसे आयोजन जिस देश में हो वो देश शिक्षा के क्षेत्र में कभी पीछे नहीं रह सकता।
0: आपका वचन सत्य है महारानी। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय। ब्रह्मवादिनी गार्गी की जय।
2: गार्गी इस शास्त्रार्थ में पराजित तो हुई, परंतु अपने ज्ञान और अपनी विनम्रता के कारण उन्होंने सबके दिल में अपना स्थान बना लिया। इसी कारण उनके नाम पर विविध शिक्षा संस्थानों के नाम भी रखे जाते हैं। आज के काल में भी हमारे देश में कोई लड़की अगर डिबेट में अच्छी हो या अच्छी ओरेटर हो तो उसे कहा जाता है कि वो तो गार्गी जैसी है। सरकार द्वारा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गार्गी पुरस्कार योजना शुरू की गई है। ऐसी ब्रह्मवादिनी महान विदुषी गार्गी को हम सब भारतवासी प्रणाम करते हैं। जय हो वाचकनवी गार्गी।
3: अभी आपने सुना कार्यक्रम गार्गी। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा।
4: और अब करते हैं अंतरिक्ष की सैर और जानते हैं हमारे सौर मंडल में जलते एक आग के गोले के बारे में जिससे हमें जीवन मिलता है।
3: इस कार्यक्रम का शीर्षक है आग का गोला।
5: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम आ जाओ सब लोग आ जाओ, जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश शाबाश, कर नहीं देना बेटा एक दूसरे को। नहीं बेटा नहीं, मैंने अभी कहा ना तुम यहाँ बैठो, हाँ शाबाश, और तुम्हारी जगह इसके साथ, हाँ यहाँ बैठो, ठीक है, ठीक से बैठ गए ना सब, शाबाश, ये हुई ना बात। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहेली। गुड़िया गौरव सब तैयार? वेरी गुड, तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
6: आग का गोला?
5: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे मैं दिन रात बनाता हूँ। दूं प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
7: सूरज।
5: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो,
7: बहुत आसान पूछते हो।
5: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं है।
7: अगली बार में बहुत मुश्किल।
5: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
7: हाँ।
5: मैं कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
7: मुझे पता है सूरज आग का गोला होता है।
5: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है,
8: वो तारा होता है।
5: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक,
9: वो रात और दिन भी बनाता है।
5: एकदम सही एकदम सही,
10: वो हमें धूप भी देता है।
5: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है,
7: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।

0: हाँ, हमें क्या मिलता है पता है उससे?
1: विटामिन डी।
2: वेरी गुड,
0: बहुत समझदार हो तुम तो। विटामिन डी मिलता है, अरे तुम्हें पता है? बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे।
1: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
1: पेड़ों को खाना भी देता है।
0: बिल्कुल, एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा।
3: धरती ना सूरज के चक्कर काटती है।
0: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
1: इसलिए पूरी धरती पर रोशनी आती है धीरे धीरे धीरे धीरे। सुबह हो जाती है, धीरे धीरे रात।
0: क्या
1: कहीं और सुबह हो जाती, कहीं रात।
0: हाँ, एकदम से ना दिन आता है ना एकदम से रात आती है ना।
1: अगर सूरज राइट हैंड हो और अर्थ के राइट हैंड वाला पार्ट हो तो उस वहाँ पे सुबह होती है, और लेफ्ट वाला पार्ट हो तो उसमें रात होती है।
0: क्या बात है भाई, इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
1: धीरे धीरे अर्थ घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
0: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं। और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
3: हाँ, जब भी तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
0: हाँ, हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ, इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
1: मौसी, जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
0: हाय हाय, क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं, चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
1: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
4: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
0: ना।
4: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
0: हाँ, और सर्दियों में अच्छा लगता। तो बच्चों, सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
1: मौसी, वो बहुत बड़ा भी होता है।
0: बहुत बड़ा होता है
4: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
0: हम क्योंकि कहीं
1: दूर होता है, इसलिए
0: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
1: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
0: हाँ,
1: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
0: अरे वाह भाई, तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा, एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
0: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना।
1: हाँ।
0: अच्छी लगती है सर्दी।
1: हाँ, पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
0: हाँ, शुक्र है गर्मी में नहीं लगती
4: नहीं
0: है। सूरज आग का गोला, लेकिन
5: सूरज आग का गोला लेकिन
0: फिर भी जीवन दाता है।
5: फिर भी जीवन दाता है।
0: धरती काटे चक्कर इसके।
5: धरती काटे चक्कर इसके।
0: लगे ये चलता जाता है।
5: लगे ये चलता जाता है।
0: सर्दी गर्मी बनते इससे।
5: सर्दी गर्मी बनते इससे।
0: ये दिन रात बनाता है।
5: ये दिन रात बनाता है।
0: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
5: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक।
0: सूरज ये
5: कहलाता है।
0: शाबाश, सूरज ये कहलाता है। सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
1: मौसी, कर पहेली आज ही बता दो।
0: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है,
4: जल्दी आना मौसी।
0: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
1: हमें देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
0: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
1: वो भी दस पूछेंगे।
0: दस पहेलियाँ? चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
1: है। कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
0: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
4: नहीं, 80 हो जाएंगे।
0: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके, इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा, बाय बाय।
6: अभी आपने सुना कार्यक्रम आग का गोला।
0: इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं समाप्त होता है।
2: तो अब अजीत
0: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
2: शारदा। सबको हाथ बटाना है, टीवी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीवी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीवी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीवी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
3: हाय, मैं हूं विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये कैसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्ची की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अब तो तुम्हारी तबीयत काफी बेहतर लग रही है। टीबी का इलाज सही से हो रहा है ना?
2: बेहतर, बल्कि अब तो मैंने दवा खानी भी छोड़ दी है।
1: मतलब डॉट्स की दवा बीच में ही छोड़ दी है?
2: अबे, शेव कैसे बनती है वो भी सिखाना पड़ेगा। देखता नहीं दाढ़ी अधूरी छोड़ दी है।
1: शेव जैसी छोटी बात की तो बहुत परवाह है, लेकिन जिंदगी की परवाह नहीं है। सुना नहीं, रेडियो पर सारा दिन बताते हैं कि इलाज अधूरा छोड़ा तो टीबी लाइलाज हो जाएगी।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़ें। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
1: कल ही डॉट सेंटर चला जा।
2: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

अभिमान की दो अहमियत है। एक तो ये कि बर्मन साहब के साथ मेरी सबसे आखिरी पिक्चर है और बर्मन साहब की लाइफ की भी सबसे आखिरी पिक्चर है अभिमान। उसके बाद वो फिर रहे नहीं दुनिया में। और उसमें एक गीत था, मुझे वो गीत बस पसंदली बहुत पसंद है, न जाने आप लोगों को पसंद होगा या नहीं, कि तेरे मेरे मिलन की ये रहना नया कोई गुल खिलाएगी, तभी तो चंचल है।

0: महावारी एक महिला के संपूर्ण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये एक कुदरती घटना है, फिर भी ये दुनिया भर में लाखों महिलाओं के लिए नियमित तौर पर और भयंकर रूप से उनके शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वास्थ्य में रुकावट बनती है।
1: महावारी एक ऐसी घटना है जिसका सामना महिलाएं और लड़कियां मानव जाति की शुरुआत से ही करती आ रही हैं। हालांकि यही मानव जाति के लगातार अस्तित्व में बने रहने का कारण भी है। फिर भी एक महिला की महावारी के साथ बहुत ज्यादा शर्म और संकोच जैसे भाव जुड़े हुए हैं।
0: महावारी को अक्सर खून, अशुद्धता और घृणा से जोड़ा जाता है, जो कि सरासर गलत बात है। इसी कारण से महिलाएं अपनी महावारी के बारे में बात करने में संकोच महसूस करती हैं।
1: इसलिए लड़कों और लड़कियों दोनों को ही महावारी और मासिक चक्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने की जरूरत है। महावारी से संबंधित गलत अवधारणाओं या मिथकों को दूर करने में लड़के भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM। Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878 9377 0। सीट्स आर लिमिटेड, हरी अप, कहीं देर ना हो जाए।

धरती मेरी धरती प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की कड़ी महासागर वातावरण का आपसी तालमेल और जीवन। पिछली कड़ी में आपने सुना सूरज की ऊर्जा ने धरती पर जीवन संजोने में एक अहम भूमिका निभाई है, पर इस निरंतर चलते जीवन को धरती पर मौजूद महासागरों एवं वातावरण ने भी अपनी प्यार भरी थपकियां दी। तो आइए सुनते हैं महासागर वातावरण का आपसी तालमेल।

0: तारे जमीन, अरे हमारे तारे कहाँ गए? वसुधा
1: जी,
0: अरे ये मानव और सृष्टि उठे कि नहीं अभी तक, और विवेक स्टेशन पहुंचा कि नहीं?
1: देखती हूँ। मानव सृष्टि, मानव मानव उठो, चलो उठो सृष्टि।
2: क्या मम्मी, संडे के दिन तो सोने दो।
3: हाँ मम्मा, पापा भी कितनी जोर से चिल्लाते हैं।
1: अरे चिल्लाएंगे नहीं बेवकूफों, सूरज आसमान पर चढ़ गया और तुम दोनों उठते ही नहीं हो। चलो उठो, ब्रश वगैरह करो, उठो अब।
3: अरे मम्मी, ये विवेक भैया कहाँ गए?
1: अरे तुम्हारे पापा के कॉलेज के दोनों के दोस्त डॉक्टर ब्रजमोहन और उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना और उनके एक और सहपाठी डॉक्टर शमसुल इस्लाम आ रहे हैं आज।
4: डॉक्टर शमसुल इस्लाम?
1: हाँ।
4: यानी कि इस्लाम अंकल? जो मुझे बहुत डांटे थे। लेकिन वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर?
1: मानव ऐसे नहीं बोलते बेटा, तब तुम बहुत छोटे थे और इस्लाम भाई साहब को बहुत तंग करते थे, अब तो तुम काफी शरीफ हो गए हो ना।
3: ये और शरीफ? अरे मम्मी, इस्लाम अंकल पहले तो सिर्फ डांटते थे, अब तो ये शरीफ मानव पिटने के लायक है।
4: पिटने के लायक है? पर मम्मी ये सब यहाँ पर आ क्यों रहे हैं?
0: अरे मानव, मानव और सृष्टि फटाफट तैयार हो जाओ। अरे भाई, ये तीनों हमारे देश के जाने माने समुद्र और मौसम विज्ञानी हैं। पता है डॉक्टर इस्लाम तो 3 बार एंटार्क्टिका जा चुके हैं।
4: बहुत अच्छी बात है पापा, लेकिन ये हमारे घर क्यों आ रहे हैं?
1: चुप मानव, अगर दोबारा ऐसा बोला ना तो बहुत पिटाई होगी।
4: लेकिन
1: घर पर मेहमान आ रहे हैं तो खुश होना चाहिए ना बेटा, बार बार एक ही रट लगा रखी है, क्यों आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं। अब चुपचाप जाकर नहाओ, चलो।
3: वाह वाह मम्मी, मानव की सुबह का डांट से श्री गणेश।
0: अरे मानव बेटा, दिल्ली में डॉक्टर ब्रज, डॉक्टर अल्पना और डॉक्टर इस्लाम का समुद्र और वातावरण विषय पर लेक्चर है। अब सभागार यहाँ से पास है तो मैंने गेस्ट हाउस में रुकने को मना कर दिया। अब ये तीनों हमारे साथ करीब 1 हफ्ता रहेंगे।
4: इस्लाम अंकल भी 1 हफ्ता रहेंगे?
3: और क्या, और पूरे 1 हफ्ते तुझे डांट पड़ने वाली है।
4: तुम तो यही चाहते हो कि मुझे डांट पड़े।
0: अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। पिछली बार जब डॉक्टर इस्लाम आए थे तो एक तो तुम सिर्फ 4 साल के थे और बेचारा शमसुल भी अपने अंटार्कटिका मिशन को लेकर कुछ परेशान था।
3: अरे पापा, इस मानव ने इस्लाम अंकल के सारे कागज और चिट्ठियों पर भी तो रंगों से ड्राइंग बना डाली थी।
0: तभी तो डांटा था इस्लाम ने। बेचारा मानव डॉक्टर इस्लाम के शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाकर उसे ही दिखाने चला गया था।
4: मुझे डांट पड़ी और आप सब हंस रहे हो।
1: अरे मानव क्यों दुखी होता है रे, तेरे इस्लाम अंकल तुम सबको इतना प्यार भी तो करते है ना।
0: एग्जैक्टली,
1: तेरे लिए डांट के बाद खिलौने भी तो लाए थे, याद है ना?
3: और वो भी इसने उनके सामने ही बराबर कर डाले थे।
0: वैसे मेरे ये तीनों दोस्त तुम बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। पता है डॉक्टर इस्लाम तो खुद ही हमारे यहाँ रुकना चाह रहे थे और तुम्हारे बारे में तो वो पूछ भी रहे थे मानव।
4: बाप रे, अगर उन्हें मैं अभी तक याद हूँ तो मैं जल्दी से नहा धोकर अच्छी तरह से तैयार हो जाता हूँ।
1: जल्दी जाओ। चलो इस्लाम भाई साहब के डर से संडे को सुबह सुबह नहाने तो गया मानव।
0: सही बात है, उनको यही रोक के रखना
1: पड़ेगा। बिल्कुल।
0: लो अब लगता है आ गए। मानव मानव जरा दरवाजा तो खोलना।
1: अरे आप भी किसे आवाज लगा रहे हैं? मानव बेचारा तो इस्लाम भाई साहब के डर से पहले ही अपने कमरे में चुपचाप किताब खोलकर बैठ गया है।
0: अच्छा ठीक है, चलो मैं ही जाकर दरवाजा खोलता हूँ। अरे आओ आओ ब्रज, इस्लाम अल्पना कैसे हो तुम सब?
5: बिल्कुल ठीक।
1: नमस्कार नमस्कार।
5: बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक।
6: भाई बहुत वर्षों बाद मिलना हो रहा है। नमस्ते भाभी।
1: नमस्कार भाई साहब।
6: ये मेरी पत्नी और सहयोगी डॉक्टर अल्पना है।
1: नमस्ते भाभी जी।
4: नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी।
0: नमस्ते नमस्ते। और भाई इस्लाम, और बताओ कैसा चल रहा
7: है? हम तो ठीक है, आप सुनाओ कैसे?
0: हां सब खैर।
7: भैया तुम्हारा विवेक भैया तो बहुत समझदार
8: होता है। अरे
7: कुली है ना, 100 रुपए मांग रहा था, सीधे 40 करा दिए इसने।
0: अबे मुझसे तो 40 के 100 ले लेता। वैसे भाई डॉक्टर इस्लाम, अब इसका नाम विवेक ऐसे ही थोड़ी रखा है, विवेक पूर्ण है।
1: आइए ना आप लोग, नाश्ता तैयार है?
0: नाश्ता तैयार।
1: हाँ नाश्ता तैयार है।
0: लिए लिए। आप लोग लीजिए ना, सब लोग
8: पराठे लो ना।
9: वाकई बहुत स्वाद,
0: ब्रेकफास्ट स्वाद है ना,
9: अच्छा लगा भाई साहब।
7: हाँ तो भाई सृष्टि बेटे कैसी हो?
9: मैं ठीक हूँ अंकल।
7: हाँ ठीक हो? अरे आज सूर्य प्रकाश, तुम्हारा वो शैतान बेटा क्या नाम है उसका? हाँ मानव। अरे भाई वो मानव दिखाई नहीं दे रहा।
9: मानव कहाँ है? मानव मानव मानव, देखो इस्लाम अंकल बुला रहे हैं तुम्हें।
0: अब ना
9: अंकल। अंकल मानव आपकी 5 साल पहले की डांट अभी तक नहीं भूला।
7: बिल्कुल सही है। चलो तुम्हें मैं ही बुला लेता हूँ। मानव, अरे मानव कहाँ हो?
0: लो आ गया मानव।
9: नमस्ते अंकल।
7: नमस्ते नमस्ते।
9: नमस्ते आंटी।
10: नमस्ते बेटा।
7: भाई मानव बहुत बड़ा हो गया, अरे इधर आओ।
9: जी अंकल।
7: क्यों बच्चे कैसे हो?
9: मैं ठीक हूँ।
7: हाँ भाई तो कौन से क्लास में आ गए?
9: मैं 4th class में।
10: अरे वाह मानव तो वाकई बड़ा हो गया।
11: अंकल आपका लेक्चर समुद्र और वातावरण विषय पर है ना?
12: हाँ विवेक, मैं और अल्पना वातावरण पर बोलेंगे और डॉक्टर इस्लाम महासागरों और समुद्रों तथा वातावरण के आपसी तालमेल पर बताएंगे।
9: अंकल महासागर और वातावरण का आपस में क्या तालमेल है?
7: अरे वाह मानव, लगता है हमारा लेक्चर तो अभी से शुरू। क्यों है?
10: बेटा पहले नाश्ता कर ले, फिर तुम्हारे सभी सवालों का जवाब देंगे। ठीक है
0: जी। चाय
12: और हाँ, जब तक हम हैं तब तक मानव को रोज कम से कम 4 सवाल जरूर पूछने होंगे। ठीक है मानव?
9: जी अंकल।
7: चलो जल्दी जल्दी नाश्ता कर लो, तब तक मानव तुम कुछ सवाल सोचते रहो। क्यों मानव?
9: जी।
0: थोड़ा शुगर पास करना यार।
9: सादा अचार मत खाओ बेटा।
13: हाँ अंकल, आप बता रहे थे कि महासागर, सागर, वातावरण और भूमि का आपसी तालमेल है।
7: हाँ बेटे सृष्टि, चलो मैं तुम्हें से पूछता हूँ कि धरती की 3 मुख्य प्रणालियाँ कौन सी हैं?
9: प्रणालियाँ क्या मतलब अंकल?
12: बेटे मानव, हमारा प्रणाली से मतलब है वो मुख्य तंत्र या सिस्टम जो इस धरती पर जीवन बनाने तथा बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है।
13: ब्रज अंकल, जीवन के लिए आवश्यक है हवा, पानी और खाना यानी भोजन, है ना?
9: बिल्कुल ठीक कहा दीदी, इन तीनों के बिना, खास करके भोजन के बिना तो जीवन होगा ही नहीं।
10: सृष्टि बेटे तुमने एक आम व्यक्ति के रूप में बिल्कुल ठीक कहा, पर अगर हम वैज्ञानिक रूप से धरती के बदलते मौसम, जलवायु, पेड़ पौधे, पर्यावरण, तापमान आदि का एक भौतिक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो हम थोड़ा और बड़े और व्यापक स्तर पर जाते हैं।
11: आंटी मेरे हिसाब से धरती के 3 मुख्य तंत्र होंगे, भूमि, महासागर और वातावरण।
0: वेरी गुड, वेरी गुड।
7: बिल्कुल सही। देखो सृष्टि और मानव, जो तुमने कहा वो भी ठीक था, पर विवेक ने इसे एक बड़ी प्रणाली समझते हुए हवा को वातावरण, पानी को महासागर तथा आवास एवं खाने को भूमि का हिस्सा बना दिया।
10: विवेक तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, हालांकि आवास एवं भोजन हमें पानी में भी उपलब्ध है, इसलिए भूमि की यहाँ एक नई भूमिका हो जाती है।
9: कैसी भूमिका आंटी?
12: समझाते हैं, पर मानव अपने सवाल भी सोचते रहना। अच्छा
9: जी।
7: देखो जैसा विवेक और डॉक्टर अल्पना ने बताया, भूमि, महासागर तथा समुद्र इसी धरती के 3 मुख्य तंत्र हैं, और इन्हीं तंत्रों का आपसी तालमेल हमें नए नए मौसम, खाद्य पदार्थ तथा जीवन देता है।
12: यानी हम पूरी धरती को अलग अलग तंत्रों की एक ऐसी अनूठी प्रणाली के रूप में देखते हैं, जहाँ सारे भौतिक पैमाने मिलकर हमारी इस धरती को अद्भुत एवं जीवन भरा ग्रह बनाते हैं।
10: यानी सभी तंत्रों की परस्पर क्रिया चलती रहती है, जिससे हवा, आंधी, बारिश, तूफान, चक्रवात आदि आते हैं।
9: वो कैसे आंटी?
7: तो मानव
9: जी,
7: पहले तुम 3 तंत्रों को अलग अलग रूप में समझ लो, फिर तुम्हें इनका आपसी संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। तो मानव अपनी स्कूल की कोई पुस्तक या कॉपी ले आओ जरा।
9: वो क्यों अंकल?
7: अरे भाई तुमने मेरे सारे शोध पत्रों पर ड्राइंग बनाई थी, अब मैं तुम्हारी पुस्तक पर ड्राइंग बनाकर उनको जरा थोड़ा सा रंग दो। क्यों?
9: मम्मी।
14: अरे नहीं बेटा, क्या इस्लाम भाई साहब, आप भी ना
1: बेचारा मानव इतनी मुश्किल से तो हिम्मत जोड़ पा रहा है और आप उसे तोड़ने में लगे हुए हैं।
7: ये बात है। तो मानो, चलो किताब रहने दो, चलो अब ध्यान से समझो, कुछ पल लेना पड़े तो बता जरूर देना।
10: जी। हाँ भाई, पिछले कुछ दशकों में धरती की प्रणालियों की जटिलता का अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वातावरण, महासागर, भूमि और यहाँ तक सभी जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी शामिल हैं, सभी आपस में एक नाजुक तार से बंधे हुए हैं और किसी भी एक भाग की गतिविधि हर एक तंत्र को प्रभावित करने की क्षमता रखती है।
4: हैं? नाजुक तार से बंधे हुए हैं? कौन सा तार? मैंने तो कोई तार नहीं देखा।
7: मानव। अरे भाई मानव, यही तो ऐसा तार है जो दिखाई नहीं देता और महसूस सब करते हैं।
4: वो कैसे अंकल?
11: अब देख मानव, अब मैं पापा के स्कूटर पर रोज तुझे घुमाता हूँ, तुझे तो बड़ा मजा आता है ना?
4: हाँ भैया।
11: पर जो तुझे आजकल ज्यादा गर्मी लगती है उसमें कहीं ना कहीं इस स्कूटर की भी भूमिका है।
4: स्कूटर का गर्मी से क्या लेना?
10: लेना कैसे नहीं मानव, स्कूटर, कार, बस, फैक्ट्री आदि से निकलने वाले धुएं में ऐसी गैसें होती हैं जो गर्मी बढ़ाती हैं।
1: देखा मानव, विवेक भैया के साथ तेरा स्कूटर पर लगाया गया फालतू चक्कर कैसे पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।
0: बिल्कुल ठीक कहा सृष्टि। तो मानव, यही है वो अदृश्य धागा जिससे हम सब बंधे हैं और हमारी जरा सी गड़बड़ी पूरे जीवन की डोर को ही तोड़ सकती है। अब समझ में कुछ आया मानव?
4: थोड़ा थोड़ा पापा,
0: थोड़ा।
7: चलो तुम्हें विस्तार से समझाते हैं। पहले वातावरण से शुरू करते हैं। अब मानव, जैसे तुम सागर से बहुत दूर यहां दिल्ली में रहते हो तो तुम्हें लगता है कि सागर या महासागर की तुम्हारे जीवन में कोई भूमिका नहीं है, है ना?
10: हाँ, पर बच्चों ऐसा नहीं है। महासागरों और वातावरण का एक साथ एक एकल तंत्र के रूप में ही अध्ययन किया जाता है, क्योंकि ये एक समान पारस्परिक क्रिया तथा अदला बदली से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए हैं।
7: हाँ बच्चों, दोनों ही महासागर और वातावरण अपने में होने वाली गतिशीलता के लिए ऊर्जा सूर्य से ही ग्रहण करते हैं, समझे?
12: और ताप या

0: इस दौरान ये हवा जल वाष्प के साथ साथ पानी के तापमान के गुण भी अपने में समा लेती है।
1: हाँ तो भाई मानव, कुछ समझ आया?
2: शायद
3: भाई ये क्या जवाब हुआ?
4: अरे भाई लगता है मानव को सब धीरे धीरे समझाना पड़ेगा।
0: अच्छा तो मानव, जैसा मैंने पहले बताया था, शुरुआत वातावरण से करते हैं।
2: जी,
0: वातावरण असल में गैसों का आवरण होता है जो पूरी धरती को अपने में समेटे हुए है।
3: हाँ, जब सूरज से आने वाली किरणें हमारी धरती के वातावरण में प्रवेश करती हैं, तो कुछ तो बादल और धूल के कारण वापस ऊपर की ओर परिवर्तित कर दी जाती हैं और कुछ भू सतह की ओर बढ़ती हैं।
0: अच्छा, अब जो किरणें जमीन की सतह की ओर बढ़ रही हैं, वो जब सतह से टकराती हैं, तो कुछ विकिरण तो धरती सोख लेती है और कुछ विकिरण बर्फ, पानी तथा अन्य परावर्ती सतहों से टकराकर वापस अंतरिक्ष की ओर लौट जाती हैं।
2: अच्छा,
0: और धरती से टकराकर ये इंफ्रारेड विकिरण में बदल जाती है, यानी धरती भी ऊष्मा लौटाती है।
4: अब हमारे वातावरण में कुछ गैसें होती हैं जो अपने खास गुणों के कारण बाहर निकलने वाली लंबी तरंगों वाली इंफ्रारेड विकिरण को बचकर नहीं जाने देती और उनकी ऊर्जा को सोख लेती हैं। इस कारण ये वापस धरती से टकराती हैं और सतह के तापमान में बढ़ोतरी करती हैं।
3: ये घटना धरती के समूचे इतिहास में होती रही है और इसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं, समझे?
2: जी।
3: बगैर वातावरण और ग्रीन हाउस प्रभाव के यह धरती बर्फ से जम जाएगी और यहाँ जीवन संभव नहीं होगा, समझे?
2: समझ गया अंकल। पर अब मुझे ना खेलने जाना चाहिए।
3: अरे अभी से? मानव अभी कहाँ चले, अभी तो मुझे तुमसे पुराना हिसाब किताब पूरा करना है।
2: पर वो...
4: और बेटे मानव, तुमने 4 सवाल भी तो नहीं पूछे।
2: जी वो बेचारा मानव फंस गया। अंकल आपने सारी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाई है कि कोई सवाल पूछने के लिए ही नहीं है।
3: क्या बात है मानव, भाई हमने समझाया कहाँ है, अभी तो समझाना है भाई।
5: वैसे मानव बेटा
2: जी,
5: जीवन में बहुत कम मौके आते हैं जब सवाल पूछने का अवसर मिलता है और उनके जवाब जानने का भी, इसलिए भाई मेरा मानना है कि ऐसे मौकों को खोना नहीं चाहिए।
2: बिल्कुल।
5: और इसलिए अभी बैठ जाओ, खेलना बाद में, ठीक है?
2: ठीक है पापा। अच्छा अंकल, समुद्र में गति को मापने की इकाई को नॉट क्यों कहते हैं?
4: अरे वाह मानव बेटे, तुम्हारे पास तो बड़े रोचक सवाल है।
2: जी
4: भाभी, मानव के इसी सवाल पर एक एक चाय हो जाए।
6: अरे बिल्कुल भाई साहब, आपने कहा और अभी लेकर आती हूँ।
5: पेट में नॉट पड़ रही है,
3: नॉट पड़ रही है।
0: हाँ तो मानव, तुम्हारे इस रोचक सवाल कि समुद्र में गति मापने की इकाई नॉट क्यों है का जवाब अब ध्यान से सुनो। भाई पुराने समय में नाविकों द्वारा गति नापने की विधि से ये नाम पड़ा है।
2: अच्छा।
4: असल में पुराने समय में नाविक एक रस्सी जिसके हर 14.4 मीटर पर एक गांठ बंधी होती थी, उस एक सिरे को लकड़ी के लट्ठे से बांधकर समुद्र में फेंक देते थे।
3: अब ये लकड़ी का लट्ठा अपने साथ रस्सी को खींचता, अब हर 28 सेकंड में कितनी गांठें लट्ठे ने खींची हैं, इससे नाविक जहाज की गति का पता लगाते हैं। गांठ को अंग्रेजी में नॉट कहते हैं, इसलिए नाम पड़ गया।
0: आज एक नॉट मतलब 1.85 किलोमीटर प्रति घंटे की गति होती है, समझे?
2: जी आंटी।
5: अरे मानव, तुम बेकार में अपने इस्लाम अंकल से डरते हो, देखो वो तुम्हें कितनी अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं।
2: हाँ पापा।
3: मानव ज्यादा खुश मत होना, सारी बातें खत्म करके मुझे तुम्हारी सब किताबों में अभी ड्राइंग भी बनानी है।
2: मम्मी
6: क्यों तंग करते भाई साहब बच्चे को, लीजिए चाय लीजिए भाभी जी।
5: हाँ थोड़ी ब्रश तुम भी लो ना।
3: जी क्या बात है।
7: एक सवाल था, वातावरण की गैसों से आने वाली ऊर्जा और ऊर्जा छोड़ने के बीच में संतुलन बन पाता है, ठीक अंकल? पर वातावरण में कौन कौन सी गैसों का स्तर है?
3: हाँ तो विवेक, अब अगर शुष्क हवा में देखें तो मुख्यतः नाइट्रोजन लगभग 79% है।
7: अच्छा।
3: ऑक्सीजन 20%
7: और
3: और

0: आर्गन करीब 1% के आसपास है।
1: अच्छा।
0: जबकि वाष्प जो भिन्न भिन्न मात्रा में वातावरण में मौजूद है, एक मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, समझे।
2: और अन्य ग्रीन हाउस गैसें बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में वातावरण में मौजूद होती हैं, जिन्हें पार्ट्स पर बिलियन यानी PPB में मापते हैं।
3: अल्पना आंटी, पार्ट्स पर बिलियन का मतलब हुआ 1 अरबवां हिस्सा। इतनी छोटी मात्रा में इन गैसों का क्या फायदा या नुकसान?
4: नहीं सृष्टि बेटे, ऐसा नहीं है। हाँ? एक सूक्ष्म गैस जिस पर आजकल बहुत ध्यान दिया जा रहा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
0: इस कार्बन डाइऑक्साइड का वर्तमान में स्तर 0.034% के लगभग है और इतनी सी मात्रा में ये अच्छी खासी गर्मी पैदा करने में सक्षम है, जानते हो।
5: मिसेस मल्होत्रा, आइए। भाई साहब, ये हमारी पड़ोसन है मिसेस मल्होत्रा।
6: ओ जी, नमस्कार।
7: नमस्कार, नमस्कार। आइए आइए मिसेस मल्होत्रा, कैसे आना हुआ आपका?
6: ओ जी, वो अपना मानव आज हैप्पी के साथ खेलने नहीं आया, इसलिए देखने आई थी, कहीं तबीयत तो नहीं खराब है जी?
3: हाँ आंटी, मानव की तबीयत तो वाकई इस समय बहुत खराब है।
5: नहीं नहीं मिसेस मल्होत्रा, ऐसी कोई बात नहीं। असल में ये मानव के पापा के दोस्त डॉक्टर इस्लाम, ये हैं डॉक्टर ब्रजमोहन और आप उनकी पत्नी डॉक्टर अल्पना जी हैं। ये मानव को वातावरण और महासागरों के बारे में कुछ समझा रहे थे इसीलिए।
6: ओ जी, आप डॉक्टर हो तो बीमारी शिमारी की बातें करो ना जी, ये समुद्र से हमारा क्या लेना देना, और वातावरण तो पहले ही खराब है ना जी।
7: और नहीं नहीं परजाही जी, असल में ये बीमारी वाले डॉक्टर नहीं बल्कि समुद्र और वातावरण पर शोध करने वाले वैज्ञानिक हैं। खैर, आप बैठिए ना हमारे साथ, चाय पीजिए, आइए बैठिए।
6: जी भाई साहब, जरूर बैठूंगी, पर वसुधा जरा चाय में थोड़ी चीनी ज्यादा डालो।
7: अच्छा, मुझे लगा था चीनी कम डालनी।
5: दुनिया का कम पे जोर है, आप ज्यादा कहती है तो ज्यादा चीनी वाली चाय लाती हो।
3: हाँ तो अंकल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अलावा आजकल मीथेन गैस के बारे में भी बहुत बातें हो रही हैं, है ना?
0: हाँ सृष्टि बेटे, बिल्कुल ठीक कहा। मीथेन भी एक महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है और इसके बढ़ने का एक प्रमुख कारण बढ़ती मानव आबादी है।
6: ओ जी डॉक्टर साहब, बढ़ती मानव आबादी पर अपनी कॉलोनी में तो एक ही मानव है और वो है ये हमारा मानव पुत्र।
4: नहीं नहीं मिसेज मल्होत्रा जी, असल में इस्लाम का मतलब पूरी मानव सभ्यता से है।
6: ओ जी, ओ।
4: हाँ तो सृष्टि बेटी, हमारी मवेशियों की बढ़ती आबादी तथा मुख्यतः धान की खेती से मीथेन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है।
2: पहले मीथेन का स्तर करीब 0.003% था जो अब बढ़कर 0.018% हो गया है।
3: अच्छा।
2: ऐसे ही पहले कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 18वीं सदी की शुरुआत में 0.028% था जो अब 0.034% के करीब है।
5: जी भाभी जी, चाय चीनी पूरे 3 चम्मच।
6: थैंक यू वसुधा। ओ जी डॉक्टर साहब, अब इतनी सी मात्रा बढ़ने से क्या होता है जी? अब चाय में चीनी 3 चम्मच डालो या 3.5, क्या फर्क पड़ता है जी?
0: मल्होत्रा भाभी जी, ये जानने के लिए तो आपको भी हमारे साथ रोज बैठना पड़ेगा। अभी तो हम वातावरण की बात कर रहे हैं, फिर इन दोनों के बीच के परस्पर संबंध समझाएंगे तभी तो आप 3 चम्मच और 3.5 चम्मच का फर्क जान पाएंगे।
6: ओ जी, इसमें तो बहुत टाइम लगेगा जी, मुझे तो मल्होत्रा साहब का और हैप्पी के लिए खाना भी तो बनाना है जी।
4: अरे नहीं नहीं नहीं, सारी बातें आज नहीं, धीरे धीरे करेंगे। अभी तो आप ये भी जानेंगे कि कैसे जंगल कार्बन और नमी का भंडार होते हैं और कैसे समुद्री जीव कार्बन सोखते हैं।
2: अब महासागरों में वातावरण के कारण महासंचार होता है और इससे समुद्री पानी के गुणों में अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है।
0: अब जिस वातावरण की हम बात कर रहे हैं, ज्यादातर उसकी प्रकृति महासागरों पर निर्भर करती है और ज्यादातर उसकी ऊर्जा का स्रोत भी महासागर ही होता है।
4: बारिश आंधी आदि सभी इन महासागरों और वातावरण के आपसी तालमेल का ही नतीजा है। चलो मानव, आज तुम हैप्पी के साथ खेलने जाओ पर कल हैप्पी को भी जरूर लेकर आना। और हाँ, तुम्हें और हैप्पी को मिलकर 4 सवाल जरूर पूछने होंगे।
0: एक माना
3: जी
0: हाँ रहेगा। चलो सूर्य प्रकाश, हम भी थोड़ा टहलाएं, बैठे बैठे थक गए, और लौटकर मुझे मानव की किताबों पर ड्राइंग भी तो करनी है।
6: अरे मम्मी
5: बेटा कर लेते थे ना अंकल को ड्राइंग एक दिन।
0: अच्छा मिस्टर मल्होत्रा, आप भी आना कल।
6: हाँ जी,
0: खूब सारी बातें करेंगे।
6: जरूर आऊंगी। वैसे मेरे हैप्पी को महासागरों के बारे में खूब पता है जी।
2: हाँ। तो चलिए कल उससे भी मिल लेते हैं।
7: आओ इस्लाम ब्रिज, थोड़ा टहलाएं। तुम भी चलो विवेक।
3: मम्मी, इस्लाम अंकल और ब्रज अंकल को कितनी जानकारी है ना?
5: बिल्कुल है बेटा, और तुम्हारी अल्पना आंटी को भी।
1: लेकिन मम्मी, वो इस्लाम अंकल मेरी किताबें गंदी कर देंगे।
2: भाई अब वो तो बाद में ही पता चलेगा, अभी तो तुम जाओ और खेलाओ। जाओ।
6: अच्छा वसुधा, मैं चलती हूँ, कल अपने हैप्पी को लेकर आऊंगी। अच्छा सृष्टि।
3: अच्छा आंटी।
6: अच्छा अल्पना जी, बाय बाय
5: बाय बाय बाय बाय। हाय।

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।
1: नवजात शिशु के संपूर्ण विकास के लिए दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए ये आहार। जो अपने जन्मजात बच्चों का अच्छा विकास देखना चाहती हैं, उन्हें स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए। आपके द्वारा किए गए स्वस्थ और पौष्टिक आहार का सेवन आपके बच्चे को उचित मात्रा में सभी पोषण तत्व प्रदान करता है और किसी भी प्रकार के पोषण तत्व की कमी से पीड़ित नहीं होने देता। स्वस्थ और पौष्टिक आहार केवल गर्भ अवस्था के दौरान ही आवश्यक नहीं होता है, बल्कि वो आपके स्तनपान की गुणवत्ता के लिए भी जरूरी होता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपने सामान्य आहार में उच्च प्रोटीन, कैल्शियम, पोषण तत्व और विटामिन युक्त आहार का सेवन करना चाहिए, साथ ही उन्हें तरल पदार्थ का भी सेवन करना चाहिए। तो चलिए कुछ ऐसे ही खाद्य पदार्थ के बारे में जानकारी लेते हैं, जिनके सेवन से आपके बच्चे के विकास के लिए संपूर्ण पोषण तत्व प्रदान हो सकते हैं। दूध पिलाने वाली महिला को पीना चाहिए दूध। आपके आहार में कैल्शियम को बनाए रखने और उसे बढ़ाने के लिए दूध आवश्यक है। यह आपके बच्चे की हड्डियों के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी हड्डियों में उचित कैल्शियम बनाए रखता है। यह आपके बच्चे के शरीर में एनर्जी बनाए रखने में मदद करता है। स्तनपान कराने वाली माँ को पीना चाहिए अधिक पानी। स्तनपान कराने वाली माताओं को कैफीन युक्त और अल्कोहल पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रसायन स्तनपान के माध्यम से आपके शिशु के अंदर भी जा सकते हैं। कैफीन युक्त पेय के 3 कप से अधिक का सेवन करने से माताओं को नींद न आने की समस्या हो सकती है और आपके शिशु में चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। दूध पिलाने वाली माँ का भोजन। बच्चे के जन्म के बाद माँ आहार में खाएं हरी पत्तेदार सब्जियाँ। स्तनपान कराने वाली माताओं को हरे पत्ते वाली सब्जियों का उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरे पत्ते वाली सब्जियाँ विटामिन और पोषण तत्व जैसे विटामिन ए और कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन आदि में समृद्ध होती हैं, जो माँ और बच्चे दोनों के अधिकांश पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। बच्चे को दूध पिलाने वाली माँ को खाना चाहिए संतरा। संतरे में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके सेवन से माताएं संक्रमण से दूर रहती हैं और उनके बच्चों को प्रतिरक्षा प्रणाली बढ़ाने में भी मदद मिलती है। बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला को खाना चाहिए साबुत अनाज। साबुत अनाज फोलिक एसिड में समृद्ध होता है। साबुत अनाज सही तरह से कोशिका में वृद्धि के साथ साथ आपके बच्चों के मस्तिष्क के विकास में भी सहायता करता है। फोलिक एसिड पूरक के रूप में चिकित्सक द्वारा एक बार देने की सलाह दी जाती है। साबुत अनाज में मौजूद फोलिक एसिड इन पौष्टिक जरूरतों को पूरा करने में मददगार है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं खाएं मछली। सैल्मन मछली DHA से समृद्ध होती है और इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी उच्च मात्रा में पाई जाती है। यह आपके बच्चे के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक है, हालांकि इसका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।
2: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25 मई से 8 जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
1: For more information, please call Dr. Ramneet 9878-93-7770. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने वाले हैं कि विटामिन B12 की कमी से क्या क्या दिक्कतें परेशानियां हमारे सामने आ सकती हैं। बात करते हैं विटामिन B12 की कमी से शरीर और ब्रेन हो सकता है कमजोर। ये 5 फूड्स खाकर इस कमी को आप पूरा कर सकते हैं। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। जाहिर सी बात है कि इसके बारे में कुछ रोज पहले हमने बातें की थी, लेकिन अब हम इससे कुछ आगे बढ़ते हैं तो बात निकलकर ये सामने आती है कि विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए कुछ फूड्स बताए गए हैं, वो अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आपकी सेहत में देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार से बात करते हैं। विटामिन B12 की कमी की समस्या काफी कॉमन है, हालांकि कई बार लोग इसे अधिक गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाने के बाद मसल्स में कमजोरी और जोड़ों में दर्द जैसी परेशानियां हो सकती हैं? विटामिन B12 DNA बनाने का काम करता है, जो ये नर्वस सिस्टम को काम करने में भी सहायता करता है। हमारा शरीर विटामिन B12 का उत्पादन खुद नहीं कर सकता, इसीलिए इसकी कमी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। विटामिन B12 की कमी से बचने के लिए लोगों को अपनी डाइट में ऐसे फूड्स शामिल करने की जरूरत पड़ती है जो विटामिन B12 से भरपूर हों। हम जानेंगे ऐसी फूड्स के बारे में जिनके सेवन से पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 पाया जा सकता है। बात करते हैं विटामिन B की कमी क्यों होती है, ये भी जानना समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर प्रिया पालन के अनुसार, उम्र बढ़ने के साथ लोगों के शरीर में विटामिन B12 की कमी होने की आशंका भी बढ़ जाती है। मसल्स में कमजोरी, हाथ पैर सुन्न हो जाना, एनीमिया और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा के लिए डॉक्टर पायल कुछ विशेष फूड्स के सेवन की सलाह देती है। चलिए जानते हैं, सालमन मछली की बात करते हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड्स में विटामिन B12 पाया जाता है, इसके लिए आप सालमन और टूना मछली का सेवन कर सकते हैं। बात करते हैं हरी पत्तेदार सब्जियों के विषय में। विटामिन B12 से भरपूर फूड्स में हरी पत्तेदार सब्जियां और कई फलों का नाम भी शामिल है। केला, पालक और चौलाई जैसी सब्जियों का सेवन करने से आपको विटामिन B12 प्राप्त हो सकता है। वहीं सीजनल फ्रूट्स का सेवन भी करने से विटामिन B12 मिल सकता है। लो फैट पनीर के विषय में जानते हैं। एक्सपर्ट्स के अनुसार लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज और दूध का सेवन करने से विटामिन B12 की अच्छी मात्रा प्राप्त हो सकती है। डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन उन लोगों के लिए और भी महत्वपूर्ण है जो नॉनवेज नहीं खाते। दूध उन शाकाहारी फूड्स में से एक है जो विटामिन B12 से समृद्ध होते हैं, साथ ही इससे प्रोटीन और कैल्शियम भी प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं मशरूम की। कैल्शियम और विटामिन डी के अलावा विटामिन B12 की अच्छी मात्रा मशरूम्स में पाई जाती है। वहीं मशरूम में प्रोटीन और कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। आशा करता हूं ये जानकारी का आपने लाभ उठाया होगा। ऐसी खास जानकारी सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा @ 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM।
1: Hey guys, what's up? क्या कर रहे हैं इस समर आप? यदि कुछ नहीं तो इस समर समर टेक एक्सप्लोरर 2026 करते हैं। शारदा यूनिवर्सिटी लेकर आ रहा है 15 डेज समर स्कूल प्रोग्राम 25 मई से लेकर 8 जून 2026 शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक जहां सीखने को बहुत कुछ मिलेगा लर्निंग कोडिंग एआई साइबर सिक्योरिटी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड मिनी प्रोजेक्ट्स विद एक्सपर्ट फैकल्टी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल डॉक्टर रमनीत 9878937770 सीट्स आर लिमिटेड हरी अप कहीं देर ना हो जाए।

0: बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। और यही लक्षण पहचान कर हमने न जाने कितनी लड़ाइयां जीती भी हैं। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे

0: भी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए।
1: देखिए, सिर्फ 5 बातें ही तो याद रखनी है आपको। 2 हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पाँच साल तक नियमित रूप से अपने शिशु का वजन कराएं।
2: अगर उम्र है ज्यादा और वजन है कम
1: तो नहीं है आपके आहार में दम,
2: न घेरे आपके बच्चे को कोई बीमारी।
1: आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सहायता से पाएं अपने बच्चे की वृद्धि की जानकारी।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
4: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ, दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
3: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। अब सरकार द्वारा सभी RNTCP नोटिफाइड टीबी मरीजों को आर्थिक रूप से सहायता उपलब्ध है। इलाज के समाप्ति तक हर मरीज को प्रति महीने 500 रुपए उपलब्ध किए जाएंगे। इससे मरीजों की नोटिफिकेशन, इलाज अनुपालन, सही पोषण और इलाज के अंतर्गत होने वाले खर्चों में सहायता मिलेगी। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: Ole ole ole. Oh, Shona. हेलो कौन
2: नमस्कार हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं
2: जल्द मिलते हैं
1: हेलो हेलो हेलो
4: आ रहे हैं दस्त दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते तो दस्त के लिए तैयार रहना घर में ORS और जिंक है ना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में
7: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक इन समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM

0: सुनो शारदा 90.8 FM सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं आजकल? एग्जाम्स हो गए हैं फिनिश। अगर कुछ नहीं सोचा है आपने तो आपके लिए मेरे पास है कुछ खास। शारदा यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज कर रहा है समर टेक एक्सप्लोरर्स 2026। ये समर कैंप रहेगा 15 डेज का, 25th मई से 8th जून। इसमें आपको पाइथन, IoT, साइबर सिक्योरिटी, AR/VR सब सिखाया जाएगा। टाइमिंग रहेगी 10 से 4।
2: For more information, please call Dr. Ramneet 9878937700. Seats are limited. Hurry up, kahin der na ho jaye.

0: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
1: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
0: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
1: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
0: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
1: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
0: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
1: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
0: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
2: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
3: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
2: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
5: प्ले, क्या बात है?

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।